0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर था अनुराधा पोडवाल और भूपेंद्र सिंह का। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: मनुष्य के भीतर ही एक दर्पण है जिसमें आत्मस्वरूप प्रतिबिंबित होता है। यह दर्पण ही मन है। मन चंचल रहता है। जब उसमें दुविधा होती है तो कभी एक ओर जाता है और कभी दूसरी ओर। हृदय के भीतर ही दर्पण है किंतु फिर भी आत्मस्वरूप के सुंदर मुख को देखा नहीं जा सकता। वो मुख तभी देखा जा सकता है जब मन की चंचलता समाप्त हो जाए। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन पानी से अधिक पतला, धुआं से अधिक सूक्ष्म और पवन से भी अधिक त्वरित गतिशील वाला है। जोगी के समान चक्कर लगाने वाला है। जिस प्रकार जोगी चारों ओर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार मन विषयों में चक्कर लगाता रहता है। चंचल मन चोर के समान है। ऊपर से ध्यानमग्न होकर प्रभु का गुणगान करता है और भीतर से विषयों की लालसा रखता है। मन जब सामान्य होता है तो विषयों की ओर प्रवृत्त रहता है। मन में दो दोष रहते हैं। एक तो वो स्थिर नहीं हो पाता, चंचल रहता है। दूसरा चोर के समान कई कार्य छुप कर करता है। मन उपदेश और परिवेश के प्रभाव से अवगुणों को समझता है फिर भी वो अवगुण करता है। मन ये जानता है कि कोई वस्तु अनिष्ट है, अनुपादेय है, फिर भी उसकी ओर प्रवृत्त होता है। अशुद्ध मन बंधन और पतन का कारण होता है। शुद्ध मन मोक्ष और उत्थान का कारण होता है। मन को कोई यत्नपूर्वक नियंत्रित करे तो वो जीवन में जितना चाहे ऊंचा उठ सकता है। मन दिन रात भोग में निरत रहता है। मन रूपी जोगी कभी भी भोज रूपी जोगनी का साथ नहीं छोड़ता है। अशुद्ध मन में रजोगुण अधिक और प्रबल होता है, इसीलिए वो काम की ओर प्रवृत्त होता है। ज्यों ज्यों सत्व की मात्रा अधिक होती है त्यों त्यों मन शुद्ध होता जाता है। मन विषयों के स्वाद में इस प्रकार लिप्त हो जाता है कि एक एक पल में नाना प्रकार के कार्य कर डालता है जिस कारण मानव का जीवन नष्ट हो जाता है। मन मदमस्त हाथी के समान है। मन को भीतर ही रोककर वश में कर लो, उसे विषयों की ओर मत जाने दो। जब वो विषयों की ओर जाने लगे तो उसे ज्ञान के अंकुश से वापिस कर लो। मन रूपी घोड़े पर एकाग्र

0: ताकि चीन कस ली जाए और संयम रूपी चाबुक हाथ में ले ली जाए, जिससे मन रूपी घोड़ा इधर उधर न भहक सके, एकाग्र भाव बना रहे। मन को अपना मित्र बनाने से मानव साधना में प्रगति कर सकता है। साधना द्वारा मन को चाहे जितना नियंत्रित कर लिया जाए, यदि उसमें कोई भी गुप्त वासना रह जाती है तो उसका पतन अवश्य होगा। मानव का शरीर मंदिर के समान है और मन ध्वजा के समान है। जैसे ध्वजा वायु के झोंकों से फहराती रहती है, वैसे ही मन विषयों के झोंकों से विचलित होता रहता है। विषयों की आसक्ति से जब मन विचलित होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। हे मन, तू मनोरथों को छोड़ दे, क्योंकि सभी मनोरथों की पूर्ति तेरे द्वारा नहीं हो सकती। संसार में किसी की भी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। यदि पानी के मथने से घी निकले तो संसार में कोई भी मनुष्य बिना घी चुपड़े रूखी रोटी नहीं खाएगा। इसीलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को नियंत्रित करने की। मन नियंत्रित रहेगा तो जीवन नियंत्रित रहेगा, और जीवन नियंत्रित रहेगा तो निश्चित है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी।
1: अभी चिंतन का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर, और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में सुनिए जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की, और सुनिए वार्ता किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान। वार्ताकार है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय चतुर्दश ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपीति न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदम मूल्यम सुनिश्चितम भविष्यति इति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मन्त्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदञ्च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं यूएई नेदरलैण्ड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी यूएई अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेष् विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेष् च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मन्त्रिमण्डलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect।
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री

0: आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code Bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essentials.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50%

0: या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपए प्रतिमा दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमा कर दिया गया है।
3: भूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो। लेकिन कांग्रेस, ममता, DMK, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था माताएं बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
1: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। IPL क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में

चार विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट द्वारा ग्राम साड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

सितों की रोशनी में क्यों अंधेरे की बात करें? रात घनेरी थी तो क्या, चलो सवेरे की बात करें। इस प्यारी से सुबह में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रुचि सचान और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बुंदेली सुगंध। इसमें सुनिए बुंदेली किस्सा नेकी का फल। किस्साकार है महेश बिलथरे।
1: किस्सा की बातें बातें से झूठी, घरी घरी के विश्राम को जाने सीताराम। ने केवाइये दोस, ने सुनाइये दोस, ने किस्सा बनाइये दोस। जीने जा बना के खड़ी करी, कत पोनी की डड़ा बतीसा की नगाड़े। बाजे जब किड़ी दम किड़ी दम किड़ी दम, किड़ी दम।

करत भैया ये गांव में बब्बा और बहू रत्ते अच्छो खातो पीतो घर भरो पूरो परिवार लड़का बहु ने बिटिया नाती नताते। एक दिना बहू ने बब्बा से कही के देखो अपन ने सब कछु देख लो ब्याह वर कर ले और अब तो मुंह लगत के तीरत और कर आवे। बब्बा कर लगे जा तो बहुत ही अच्छी बात नेकी हो पूछ पूछ। सुबब्बा कर ले अब तीरत कर भी की बात आई तो ठीक है सवेरे लड़का बंगन से पूछे। भोनसा बहु बहु बब्बा ने लड़का बंगन से बात करी और कही के हमारे ने तो तीर्थन की सोची है तुम्हारे का कह रहे भैया। लड़का बंगन ने कही के जा तो अच्छी बात है सबको करा सो तुम्हारे कर आओ। अब बहु और बब्बा की तीर्थ जावे की तैयारी भाई। बहु ने बड़े प्रेम से पाई पकवान बनाया और सतुआ शक्कर गोरी एक पुटरिया में बांध दो। दूसरी पुटरिया में उड़द बिछाऊ की लड़का ने उन्ना बांध दे। बड़े प्रेम से बहू और बब्बा बब्बा हो तीर्थन को मिदा कर दो। अब बहू बब्बा निगी गांव की गेह लड़का बहू है पहुंचा भी गए बब्बा बहू को। बोली अब तुम उन्हें घरे लौट जाओ हम और इनको बिल्कुल सोच न करियो तुम और सब जने मिलजुल के रहियो भी लौट आए। और बहू बब्बा निगत गए पूरे दिन निगी। जब दिन डूबन लगू सु एक गांव के बाहर पहुंची उते का देखत के उते एक तला एक पीपर हतु और चौतरा पे एक मड़िया बनी थी। बहू कल नहीं के रात इते रुक चलो। बब्बा ने कही ठीक है। बब्बा ने पुटरिया छोरी उन्ना बिछाए जो बहू ने कलीवा की पुटरिया छोरी दो जन ने खा पियो पर रहे। दूसरे दिन भुनसारे बहू बब्बा सकारे उठ गए दिशा में नान करके सपर खूर के जल ढार के और कलीवा करके फिर आगे निगी निगत गए उन्हें गेल में एक बमीठो मिलू। जैसे ही बब्बा ऊ बमीठी लो पहुंची सु बमीठी को सांप बोलू बब्बा कहाँ जा रहे। बब्बा कल नहीं हम तो भैया तीर्थन खो जा रहे काय। सांप कल लो के हमें सोई बब्बा तीर्थन लो आए चलो हम ही तुम्हारे संगे तीरथ कर अभी। बब्बा ने कही कहा हम आओ तुम आओ कैसो भैया संग। सांप ने कही के ई पोतला में बिठा ली बब्बा तुम अपने पोतला में बिठा ले। बब्बा कल लो पोतला तो पानी पी भी ले भैया पोतला में तुम्हें बिठा ले सो हम पानी कैसे पिए पानी तो गेल खोचाने ही। सांप कल लगू बब्बा से कि पानी तो बब्बा जाचा मिल जाए अपन खाद पिया चले। बब्बा कल लगे एक बात है लेकिन कि तुम हमें काटो तो ने सो सांप कल लो वहां नहीं काटबू नहीं काटे बब्बा। सो बब्बा कल लो तो बैठ जा भैया बैठ जा पोतला में सांप बैठ गाओ। और बब्बा ने जहाँ को तह कदा पुटांग लाओ फिर आगे निगे निगत गए निगते ही निगत बब्बा और बहू ने दूध हाम की तीरथ कर ले। जब दूध हाम की तीरथ पूरी हो गई तो बब्बा ने कही के अब तो हार गए हम पे अब नो नहीं निगू जात इसे घरे लौट चलो बहू। अब तो बहू ने कही के देखो ये सो करो जोन सौदा पता करने सु ले ली और फिर चलबू। सौदा पता करके दो जने घर को लौटी निगत आए जब दिन डूबू तो गांव के गेहूं कुगालो रुक गए खा पी के आराम करो फिर दिन उंगू सो चले भी घो तैयार भाई। बब्बा ने जैसे ही पोतला उठाओ ऊसे ही कंधा पे टांगो जैसे ही कंधा पे टांगो सो साफ कर लो बब्बा हमें तो कटास लगी हम तो तुम्हें आज काट भी। बब्बा ने कही ये सोहूत कहूँ जब बात ठीक नो भैया ऐसी पहला कही होती तो हम का हो तुम्हें संगे लाने रहती। सांप ने कही कि अब नहीं छटने बब्बा अब तो हम काटे हैं सही होत बब्बा आप। बब्बा ने कही कि गम खाओ हमें कोने खोपेली सुना तो लेन दी आगे भी चली सु एक पीपर को पीड़ो मिलू। सु बब्बा बहू के नीचे बैठ गए और उतई पोतला धल्ला। फिर बब्बा ने पीड़े से अपनी पूरी बात कही के हे पीपर देव तुम में तो सब देवी देवता बास करा थे हमारी यह पंचायत निपटा दियो। पीपर ने सब सुन के बब्बा से कही के ऐसा ही हो बब्बा ऐसा ही ते तो काट ले रही बब्बा को सांप काट लेते तो। पीपर की बात सुन के बब्बा हम बड़ो दुख भाव। बब्बा ने कही के ऐसो नहीं हूं तो पीपर ने कही के आदमी हमारे तरह छायरी में बैठ के हमारी जने काटत कुलरियंस गुदलत सु बब्बा हमें कैसो लगत काट ले रही सांपते तो बब्बा हूँ काट ले छोड़िए ही नहीं आज सुबह बब्बा हूँ।

0: पीपर की बात में भारी बुराई लगी। सो बब्बा कल नहीं है सो नहीं हूँ तबे न जा निपटी पंचायत। बब्बा ने पुतला टांगू और फिर निगल लगी। निगत निगत गारू ने एक गैया मिली सो बब्बा ने उस गऊ माता से कही के हे गऊ माता हमारी पंचायत निपटा दे। जब ब्याज तो बुराई भी दी। सुगैया ने कही के ऐसा ही हो बब्बा ऐसा ही ते तो काट खा रही साहब ते तो काट खा। हम और सब खो देखो बब्बा हम और घी दूध दही बठा सब देत वो आदमी हमारी को मारत काटत है काट खा रही साहब ते तो काट खा बब्बा को छोड़िए नहीं आज बब्बा को। सो बब्बा कल लगे ऐसो नहीं हो फिर भी आगे निगल लगे निगत निगत आगे उन्हें एक लड़ाई दावजू मिले। बब्बा ने लड़ाई दावजू से पूरी कथा सुनाई और कई के काय लड़ाई दावजू ये सबूत कहूँ कि हमने ही किला ने तीरथ कराए और लादे दूध पिया और ने और जी कह के हमें तो तुम्हें काटने हैं अब तुम्हें बताओ ये सो कहूँ हूँ थे पूरी पंचायत निपटा दी। बब्बा की बात सुन के लड़ाई दावजू ने सांप से कही कि तुम ई पोतला में कैसे पड़ गए तुम पे करतन सोई आ जा बनत बन ही नहीं सकत। सो सांप ने कही कि हम ई में दस वीर पड़ गए और बारह कड़े हैं। लड़ाई दावजू बोले बना ही नहीं सकत अच्छा करो और पेड़ो पड़के दिखाओ। लड़ाई की बात सुनकर सांप पुतला से बाहर करो और कड़े आओ सुकड़े आओ और फिर से भीतर पड़न लगो। जब भीतर घूमो करके सांप घुसो और तनक सी पूछ बसी लड़ाई ने बब्बा से कही कि बब्बा पे छोरिया उठाओ मैं पूछ के पुतला को मुंह कस के बांध दे। बब्बा ने जल्दी पुतला को मुंह कस के बांधा फिर लड़ाई दावजू कर लगे पुतला है तई डरन दे तुम अपने घर जाओ वे तो पुतला में पीढ़ी पीढ़ी अपनी करनी को फल भोग हैं अब जो गत हुई है सो परमात्मा जाने। बब्बा ने लड़ाई दावजू की प्रशंसा कर बड़ाई करी वो कही के जाओ भैया ई बुंदेली के साथ से हमें जा शिक्षा में लत के जीव को हमा हित करे ऊ को अहित न करो चाहिए कु के संगे बुराओ न करो चाहिए और जोन बात पी पर हो गैया ने कही सू को ध्यान रखो चाहिए कैसे बुराई काम को बुराओ नतीजा न मानो तो करके देखो दगा सगा ने भाव काऊ को न मानो तो करके देखो के साहती से पूरी भाई बड़ाई ने बनाई टिकटी हमारी के साथ निपटी।
1: अभी आप बुंदेली सुगंध कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे बुंदेली किस्सा नेकी का फल। किस्साकार थे महेश बिलथरे। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म रतन से था। आवाज थी जोहरा बाई अंबाला की। गीत रचना डीएन मधोक का था और संगीत था नौशाद का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महल का ये गीत। बोल जे नकाश के हैं और धुन तैयार की है खेमचंद प्रकाश ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म महल में सुना। बोल जे नक्श पे किते और धुन तैयार की थी खेमचंद प्रकाश ने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लाल पत्थर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत के बोल नीरज के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म लाल पत्थर में सुना। गीत के बोल नीरज के थे और संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गया सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना,
2: पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये रात फिर ना आएगी। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। शब्द कश्मीरी के थे और संगीत था ओपी नैयर का। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आपने किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में सुना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनारकली में। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और तर्ज बनाई है सी रामचंद्र ने।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म अनारकली में सुना। बोल राजेंद्र कृष्ण के थे और तर्ज बनाई थी सी रामचंद्र ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में। बोल कैफी आजमी के हैं और धुन तैयार की है मदन मोहन ने।

0: अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हस्ते जख्म में सुना। बोल कैफी आजमी के थे और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने। इसी गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: लगता है कि जहां मिल गया।

0: चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11%

0: प्रतिशत तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60

0: लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो

0: कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month.

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते।

करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते, प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता, लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर

योद्धाओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई।

जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयरस्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

बनाएंगे जाएंगे खुद सर लगो नहीं होगा इनका गुजर देख लेना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में

0: वृद्धि से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाड़ली बहनों के बैंक खातों में योजना की 36वीं किश्त अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज कलाकार हैं ब्रजभान विश्वकर्मा, ढोलक पर है महेंद्र चढ़ार, बेंजो पर है राजा राम विश्वकर्मा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनसे ये देवी गीत।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी चोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में चोयल पत्थर।
1: चोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: आइए सुनते हैं धुनी भजन, कलाकार हैं ब्रजभान विश्वकर्मा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: आइए सुनते हैं ब्रजभान विश्वकर्मा से लोक शैली ब्रज लोक रचना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए सुनते हैं चेतावनी। कलाकार है ब्रजभान विश्वकर्मा।
2: कि चार वेद छह शास्त्र में

इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे ब्रजभान विश्वकर्मा, ढोलक पर थे महेंद्र चढ़ार, बैंजो पर थे राजा राम विश्वकर्मा। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही गायक। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर के गाए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, मोनाली ठाकुर का जन्म 3 नवंबर 1985 में कलकत्ता में हुआ था। ये पेशे से पार्श्व गायिका और अभिनेत्री हैं। इनके पिता शक्ति कपूर एक बंगाली गायक अभिनेता थे और बहन मेहुली ठाकुर भी गायिका है। मोनाली ठाकुर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिप हॉप और भरतनाट्यम सीखा है। तो आइए इनकी आवाज में सुनते हैं पहला गीत जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अंतराल के पहले जो आपने गीत सुना वो था फिल्म बोलो राम से। कार्यक्रम एक ही गायक में आज आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर के गाए कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, मोनाली ठाकुर ने इंडियन आइडल 2 के बाद 2008 में फिल्म रेस से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इन्होंने लक्ष्मी 2012 जैसी फिल्मों में काम किया है। वे हिंदी, बंगाली, तमिल और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में गाना गाती हैं। इन्हें मोह मोह के धागे गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज में बिल्लू बारबर का ये गीत। इनके साथ और कलाकार जो गाने में साथ दे रहे हैं उनका नाम है सोहम और आकृति कक्कड़।

0: अभी आपने मोनाली ठाकुर, सोहम और आकृति कक्कड़ की आवाजों में ये गीत सुना। फिल्म का नाम था बिल्लू बार्बर, बोल गुलजार के थे और संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए अब सुनते हैं फिल्म लुटेरे का ये गीत, आवाज मोनाली ठाकुर की है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अभी आपने लुटेरा फिल्म का गीत सुना, आवाज थी मोनाली ठाकुर की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के थे और संगीत था अमित त्रिवेदी का। आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर का गाया अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। बोल कुमार के हैं और संगीत है मीत ब्रदर्स का।

अभी आपने बागी फिल्म का गीत सुना। आवाज थी मोनाली ठाकुर की, बोल कुमार के थे और संगीत था मीत ब्रदर्स का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दम लगा के हईशा का ये गीत, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही गायक में आज आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर के गाए कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ये गीत, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर, नेहा कक्कड़, देव नेगी और एका ने।

इसमें आज आपने पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर के गाए कुछ फिल्मी गीत सुने। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रूपये के प्रति माह के मान से 1,48,02,000 रूपये की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वसहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक

0: एक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नव विवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मीट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मीट्रिक टन डीएपी एनपीके और 3.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोक राग। इस कार्यक्रम में आज सुनिए राजस्थानी लोकगीत। कलाकार हैं अप्पा नाथ और साथी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनसे ये विरहा गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आइए सुनते हैं दीवाना गीत, कलाकार है अप्पा नाथ और साथी।

लोकराग कार्यक्रम में आज आप राजस्थानी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं अप्पा नाथ और साथी। तो आइए सुनते हैं मोरिया गीत।

अभी आप सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत लोक राग कार्यक्रम सुन रहे थे। इसमें आज आपने राजस्थानी लोकगीत सुने। कलाकार थे अप्पा नाथ और साथी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र विनीता उमर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढीगिया, नमन ढीगिया और अपार ढीगिया का। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभ चंद्र का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डग्गू सिक्का का। ये ईमेल हमें मिला है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, श्री अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। शाहजी नगर देगलू महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का। ये पत्र हमें मिला है सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजनाथ सारथी, ये थे छत्तीसगढ़ बेमेनतारा से। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। ये पत्र हमें मिला है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा, नीरज मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या नीलम देवी, छोटा बाबू। तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम। डबरीपारा तिवर्ता से गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार मरकाम, मोहन सिंह मरकाम और मनमोहन सिंह मरकाम का। छत्तीसगढ़ से ये पत्र मिला है देवशंकर तामोरिया, अजय, आरती, तुषार तामोरिया, डॉली, बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया। बनबेरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा और नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा का। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म लोफर का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ग्राम तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल संतोष नागल प्रताप नागल अभिषेक नागल शिवम नागल ग्राम बिडोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र सिंह गुर्जर सुयांश गुर्जर छाया गुर्जर मानवी गुर्जर नंदनी गुर्जर नैना गुर्जर और स्वाति गुर्जर का त्रिलोक सिंह भगत राघवेंद्र सिंह गुर्जर वकील गुर्जर देवेंद्र गुर्जर मानवेंद्र गुर्जर और राज गुर्जर का ग्राम तीतरा खलीलपुर जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अंजलि जाटव ऋषि जाटव और राघवेंद्र जाटव का ये ईमेल हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रो रोजी डिकोस्ट्रो पर्ल और विलिस डिकोस्ट्रो का ये पत्र हमें मिला है हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजिदा रानी और हीना कौसर का छत्तीसगढ़ से डोंगर गांव राजनाथ गांव से राष्ट्रपाल गजभिये बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये और राधिका गजभिये का बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा कुमारी ज्योति वर्मा सारा गांव सुजान वर्मा सुहाद्र वर्मा और आयु

जोशी और कृत वर्मा का, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का, दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा का, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके का। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सावन भादो का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और देवांशी विश्वकर्मा का। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और एसपी जायसवाल का। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और ये पत्र हमें मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डांगला परिवार का। ताज मोहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, ये हैं हरिद्वार से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। गाजीपुर से ही अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। प्रभाकर जोदले और आरती जोदले, ये हैं गौतमनगर जिला नादेड़ से। छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति का। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म राजा जानी का ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर, मनु का। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बाय हिमांशी, कमल बालूचा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का।

रानी गुरमत गुरमीत कौर मनुका मुरादाबाद से मुकेश कश्यप सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान बेबी गर्वी बेबी बाय हिमांशी कमल बालूचा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक का भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू और चंपा साहू का ये पत्र हमें मिला है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन का छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांभले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश का गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जितेंद्र बिरक मीका बिरक का छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार रोशन कुमार दिव्यांश कुमार और बंशी लाल श्रीवास्तव का तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये गीत शब्द हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। दादा बाबू रोड झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ये थे दतरंगी से। पटियाला से पंजाब से कैरव, ज्योति रानी, गुरमीत और मनु का। ये पत्र हमें मिला है राजवत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से एमएम राजवत, राज मधु राजवत, राशि चित्रंजन, सरोज आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजवत और उनका समस्त परिवार। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूसुफ खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री और कासिम हासिम इरफान मीना का। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अनोखी अदा का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

फिल्म अनोखी अदा के सिखाने के साथ ही श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त करने की विनीता ओमर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर

0: पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए और आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। इस विषय पर चर्चा करते करते सुनेंगे सुमधुर गीत, लेकिन गीत होंगे आज हमारी पसंद के और बातें होंगी आपकी। तो कॉल कीजिए 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो
3: हॉटलाइन।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
3: नमस्ते, मैं शुक्लाल प्रजापत बोल रहा हूँ, निशानपुर से, धार जिला कुक्षी तहसील से।
2: कौन शुक्ला जी, आगे पूरा नाम बताइए।
3: शुक्लाल प्रजापत जी।
2: शुक्लाल।
3: हाँ
2: जी, कहाँ से?
3: निशानपुर धार जिले से।
2: धार से।
3: हाँ।
2: तो शुक्लाल जी कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है।
2: और धार जिले में गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है?
3: गर्मी का मौसम ज्यादा है अभी, गर्मी तो बहुत ज्यादा, जिन्हें ईटे बनाते हैं हम।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: तो गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, क्या 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है।
2: बिल्कुल, और है ना, आपको तो दिन भर का काम रहता है और भरी गर्मी में ही काम करना पड़ता है।
3: हाँ, भरी गर्मी में काम करना पड़ता है और सिर पे टोपी वगैरह बांध के।
2: हाँ जी,
3: कम्प्लीट रहना पड़ता है
2: जी। बिल्कुल, काम करिए अपनी शिद्दत से, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप केरी का पना पीते रहिए, प्याज खाइए, जिससे आप लू की चपेट में ना आ पाए।
3: जी।
2: हाँ शुक्लाल जी, आज का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय हमने रखा है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए।
3: मुसीबत का सामना मैडम जी धैर्य से करना चाहिए। और क्या है कि मुसीबत तो आती जाती रहती है, समय निकलता जाता है। इसके लिए क्या है कि थोड़ा धैर्य रख के और थोड़ा सोच समझ के कोई कदम गलत ना उठाए।
2: बिल्कुल, जैसे कोई मुसीबत ना आए किसी पर भी, लेकिन यदि आपके यहाँ छोटी मोटी मुसीबत आती है तो आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं या शांति से उसका निराकरण करते हैं?
3: शांति से निराकरण करते हैं। कोरोना काल में आई थी मुसीबत तो।
2: हाँ जी
3: जी। तो क्या है कि धीरे धीरे उससे अपन पार हो तो हो गए हैं। धीरे से शांति से थोड़ा चलोगे तो बढ़िया रहेगा।
2: बिल्कुल सही बात बोली आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सुखलाल जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, 11 से 12।
3: ठीक है
2: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी। हाँ
0: नमस्ते।
1: जी मैडम, नमस्ते। मैं
0: कौन?
1: अभी बात कर रहा हूँ एमडी धार से,
0: प्रदीप
1: सुमित सुमित।
0: सुमित। अभी भी हमारे जो पहले कॉलर हैं धार से ही उन्होंने कॉल किया था।
1: अच्छा।
0: चलिए, एक हफ्ते के बाद ही कॉल कर रहे हैं ना आप।
1: नहीं, मुझे सारे नियम मालूम है,
0: अच्छा जी,
1: धर्म
0: थैंक यू वेरी
1: ना
0: मच।
1: करें। हाँ
0: हाँ
1: जी, हाँ जी।
0: जी,
1: मेरी बात किससे हो रही है?
0: कविता रावत
1: कविता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है, आपसे पहली बार बात हो रही है शायद।
0: जी। हाँ, पहली बार बात हो रही है सुमित जी। आज का जो विषय है ना वो ये है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए,
1: अच्छा,
0: क्योंकि जीवन
1: जिस
0: है तो मुसीबतें तो एक में एक आती ही रहती हैं, है ना। तो बताइए आपका इसमें क्या मत है।
1: मेरा मत मैडम इसमें यह है कि जो हमसे बड़े होते हैं या जिनको हमसे ज्यादा समझ होती है, हमें उनके जो तजुर्बे होते हैं, उनके जिंदगी में, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा हुआ होता है और वो जो संघर्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब उनके आसपास होते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखने को मिलता है उसी के आधार पे अगर हम हमारी जिंदगी में अगर कभी इस तरह की कोई भी समस्या आती है और हमें अगर उससे जूझना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा होती है। मेरा अपना खुद का अगर मैं बोलूं तो मेरी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है और बहुत सारी समस्याएं आई मेरी जिंदगी में। उनका सामना मैंने इसी तरीके से किया कि देखा लोगों को कि कैसे वो अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाला उन्होंने। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: दूसरी बात यह है कि कई बार हमें हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो हम अपने उस दौर को कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि जब आपका नाजुक दौर चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उकसाती हैं, जिनसे अगर आप अपना धैर्य खो दें या आप अपने ऊपर संतुलन ना रखें तो निश्चित ही परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही, उनसे और ज्यादा परेशानियों में हम गिरने के चांस बनते हैं,
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने, और
1: है
0: आपसे
1: ना
0: बातचीत करके आपके विचार जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बिल्कुल
1: जी।
0: सही आपने अपना मत रखा है इस विषय पर।
1: हाँ, क्योंकि जिंदगी है तो निश्चित ही ये सारी चीजों का आना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैंने एक चीज और देखी है कि जो हिम्मत रखते हैं ना, उनकी
0: हाँ,
1: जिंदगी में ये सारे दौर और ज्यादा तेजी से आते हैं। कहीं ना
0: तेजी
1: कहीं
0: से
1: ऊपर
0: आते हैं और
1: वाला ये
0: तेजी से
1: कहेंगे
0: निकल भी जाते
1: विश्वास
0: हैं।
1: जी,
0: तेजी से आते हैं और तेजी से निकल भी जाते
1: नहीं
0: हैं।
1: वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें उन्हें, उस आदमी को आजमाती हैं और उससे वो
0: हाँ
1: और अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि
0: बिल्कुल।
1: वो हमें, जैसे मुझे अब इस समय ऐसा लगता है कि अब कितनी भी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा भोपाल से लेके धार तक आने का जो सफर रहा
0: हाँ,
1: और भोपाल में मैं जो रहा, तो जो मेरा दौर रहा संघर्ष का दौर रहा, तो मुझे पता है कि मुसीबतों का सामना जो होता है वो एक समय रहते हैं, मगर सूझबूझ से कर लें तो निश्चित ही अब उसका कहीं ना कहीं फिर आगे जाके फायदा तो मिलता ही है।
0: बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बहुत अच्छी बातें करने के लिए। नमस्कार।
1: जी जी मैडम, नमस्ते आप।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते। हम
1: नमस्ते। कैसे हो?
0: अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हैं। आप कौन हैं?
0: मैं कविता रावत हूँ, आप कौन हैं?
1: मैं भावना यादव हूँ, काली चौक सिवनी से, मध्य
0: कहाँ से?
1: प्रदेश। काली चौक सिवनी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा।

0: सिवनी मध्य प्रदेश से। और भावना जी क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ
0: हैं, लेकिन हाउसवाइफ को भी बहुत काम होते हैं। अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल,
1: 12 बजे तक।
0: सही बात है, नॉन स्टॉप विदाउट पे। बिल्कुल। अच्छा भावना जी, आज के विषय पर हम आते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा है बात आपकी, गीत हमारे, और विषय है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, हम उसका सामना कैसे करते हैं।
1: मुसीबत आने पर तो मुसीबत अपने ही, कोई मुसीबत झेलना पड़ता है।
0: झेलना तो पड़ता है। आप रखती हैं?
1: जी मैम रखती हूँ।
0: तो शांति के साथ ही आप अपनी हर मुसीबत को टाल पाती हैं?
1: कभी कभी तो गुस्सा आता है, कभी उससे से कुछ नहीं होता। शांति काम करना चाहिए।
0: हाँ, इस बात को तो आप मानती होंगी कि है ना, हम अगर घबरा जाते हैं तो और हमारी मुसीबत, हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, है ना। तो जितना हम धैर्य रखेंगे, शांति से उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्दी उसके निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं। चलिए भावना जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ एक हफ्ते बाद ही कॉल किया होगा आपने। अरे चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले हफ्ते लगा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: शुभ नाम आपका?
1: जी। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े बोल रहा हूँ।
0: मनीष निमाड़े। शायद आप
1: हाँ,
0: लेटर भी लिखते थे क्या कभी?
1: बहुत कभी नहीं, अभी भी जारी है। और
0: ना
1: कम से
0: वही,
1: कम
0: क्योंकि है ना, लेटर्स पढ़ने में आपका नाम पढ़ने में आया है कई बार, इसीलिए मुझे एकदम से
1: नहीं,
0: क्लिक हुआ।
1: चलिए, धन्यवाद कि इस पत्रों की महत्ता के कारण हम कहीं तो याद हैं।
0: नहीं, बहुत बहुत वैल्यू है हमारे श्रोताओं की, ऐसी बात
1: नहीं,
0: नहीं है।
1: वैल्यू तो खैर, वो एक याद होना अलग बात है और
0: सही
1: श्रोता
0: बात
1: अपना
0: है।
1: वो होता है। और आज भी ईश्वर की कृपा से मेरी टेबल पर करीबन 300 350 पोस्ट कार्ड आज भी रखे हैं।
0: अरे, तो वो आपने पोस्ट नहीं किए क्या?
1: नहीं, लिख के नहीं रखे मैडम, लिखते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं।
0: अच्छा, ऐसे ही ब्लैंक लाकर रखे हुए हैं आपने।
1: ब्लैंक लाके रखे हुए रहते हैं। और नित्य का काम है, जैसे खाना जरूरी है ऐसे दो चार पत्र लिखना जरूरी है।
0: भाई, लेकिन है ना, हमारे इन श्रोताओं की वजह से आज भी हमारी पुरानी परंपरा जिंदा
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। चलिए,
1: हाँ,
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: चल
0: आभार।
1: रहा है। तो श्रोताओं के कारण है, और कुछ ऐसे हैं जो आज पोस्ट कार्ड जिंदा है, नहीं तो बेचारे
0: सही बात है।
1: सबके खत्म हो गए होते।
0: अच्छा मनीष जी, आज के विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करें
1: जी
0: कि मुसीबतों का सामना आप किस प्रकार करते हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए।
1: जी जी मुसीबतें, देखिए मनुष्य जीवन है और मुसीबतें, कठिनाई परेशानियां आती रहेंगी, और इसके लिए, इनका सामना करने के लिए, अगर आप हम किसी बड़े परिवार में रहे हैं, या हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे साथ हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ये अगर साथ रहे तो हमको उन्होंने बचपन में ही ठोक ठोक के सिखा दिया है कि हम छोटी मोटी मुसीबतों का कैसे सामना करेंगे।

0: कैसे पार पाएंगे, और जब मुसीबतें बड़ी आती हैं तब वो लोग भी साथ होते हैं, और हम लोग जो है परेशानी आती है तो सबसे पहले तो हम ईश्वर और उसका धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने कष्ट दिया है, उसको सहन करने की या पार पाने की हमको धैर्यता भी दी है, थोड़ा संयम से हम उसको काम लें और रास्ते सूझते जाते हैं और हम पार पाते जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये बातचीत आप कल के प्रोग्राम में 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकेंगे मनीष जी।
0: जी जी जी, क्या होता है, एक कहावत है
1: हाँ जी,
0: कि आफत के झाड़ पर मुसीबत के फल जब लग जाते हैं तो मनुष्य को तपती धूप नहीं देखना चाहिए, दूर पड़ रही छोटी सी छांव को देखकर भी मन में चिंतन करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात बोली आपने, मन खुश कर दिया। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: ओके जी, थैंक यू जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते दीदी
0: नमस्ते जी,
1: जी
0: आवाज आपकी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है।
1: जी जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: जी मैडम जी, हम ग्राम पिपलिया वराही तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से जगत सिंह चड़ार बोल रहा है दीदी।
0: जगत सिंह जी, आप तो बहुत कॉल करते हैं और आपके कॉल लग भी जाते हैं,
1: जी।
0: है ना। अच्छा जगत सिंह जी, एक हफ्ते के बीच में तो नहीं लगा आपका कॉल?
1: नहीं जी, होगा 22-24 दिन होगा।
0: चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है ना, अगर आप इस बीच में लगा होगा ना कॉल, तो अपनी बातचीत अगर मैं कर भी लूंगी तो मुझे फिर वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते के बीच में
1: सभी लोगों की देखने पड़ती है कब कौन।
0: सही बात है, वही हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सके, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसको रिकॉर्डिंग के रूप में बनाया जाए।
1: अच्छा किया, जो तो हमें कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया ये तो।
0: अच्छा जगत सिंह जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: देखो मुसीबत आ जाएगी तो वो तो अच्छे से निकालो, जैसे अच्छे से समय निकलता है ऐसे मुसीबत को भी काटो समय।
0: आपके साथ ऐसा होता है क्या, आप बिल्कुल आराम से सुकून से हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं या थोड़े से घबरा जाते हैं?
1: जी मैडम जी, हमें तो इस वन ने ऐसा ही बनाओ है कि मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि पैरों से भी नहीं चल पाती तो मुसीबत चलने में भी होती है।
0: ओहो हाँ, सही बात है।
1: देख भी नहीं पाते तो देखने की भी समस्या मन में सोचते हैं यार के ऐसा हम भी देखते।
0: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा धैर्यवान तो कोई होगा ही नहीं।
1: जी
0: है ना, इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आप खुश हैं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश मिजाज इंसान है।
1: ये पंजा सोचते अब भगवान ने जैसा किया तो ठीक किया, अब उसको क्या भगवान ही जाने जो कछु हुए।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपके परिवार में कौन कौन है जगत सिंह जी?
1: जी हमारे परिवार में परिवार बड़ा है, 5 भाई हम लोग।
0: अच्छा,
1: और सभी लोग हैं।
0: चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दूसरे श्रोता भी जो आपकी बातें सुनेंगे ना, तो निश्चित रूप से उन्हें ये सबक मिलेगा कि छोटी मोटी मुसीबतों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जब लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से झेल जाते हैं।

0: जी
1: है ना। चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए। कल आप अपना
0: बोल
1: प्रोग्राम सुनिएगा।
0: ये बोल रहा है, एक दो नाम ले सकती हैं?
1: बिल्कुल ले लीजिए।
0: रानू दीदी,
1: हाँ
0: रानू दीदी और विपिन भाई साहब, विपिन कटारे गौर झामर से।
1: अच्छा अच्छा
0: और रानू दीदी हैं देवास से।
1: बिल्कुल हम जानते हैं
0: जी। उनको अभी कॉल अभी बहुत दिन से नहीं सुना मैंने।
1: मैंने भी नहीं सुना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कॉल आए उनका।
0: जी
1: चलिए जगत सिंह जी, धन्यवाद
0: जी। नमस्ते
1: नमस्ते, नमस्ते।

0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि इतना सारा काम आप करते हैं। सुरेश जी बताइए कि आज का विषय है हमारा कि मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: मुसीबतों से घबराने चाहिए कभी।
0: जैसे यदि आपके घर में बच्चे हैं, उनके कहीं कोई नंबर कम आते हैं या कुछ है ना प्रॉब्लम आ जाती है, परीक्षा दोबारा से देनी होती है, तो वो बच्चे घबराते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं?
1: घबराने वाली बात नहीं है, फिर से प्रयास कीजिए।
0: शांति से आप बच्चों को डील करते हैं या थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं?
1: डील करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको चार झपट के मारा पीटा जाए, उसमें और बच्चा बिगड़ता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे बाकी श्रोता भी आपके बारे में जानकर बड़े खुश होंगे और उन्हें एक नया आइडिया भी मिलेगा। चलिए, धन्यवाद सुरेश कुमार जी, नमस्ते।
2: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है,

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। हमको गाना सुनना है।
0: हाँ गाना तो आपको सुनाएंगे हम, लेकिन अपनी पसंद का सुनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम है बात आपकी, गीत हमारे।
1: ऐसा
0: हाँ
1: है, बुधवार के दिन आते थे ना, फोन कर गीत सुने। अब
0: बुधवार को
1: नमस्ते
0: फोन
1: हमको
0: करें,
1: मिल
0: गीत
1: जाए।
0: सुने। आज 11 बजे से आएगा, लेकिन जो कल प्रोग्राम आने वाला है

0: मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं?
1: मुसीबत का सामना मैम करना पड़ता है, अकेले रहते तो सभी काम करना पड़ता है ना।
0: अरे आप अपना नाम तो बताइए और कहाँ रहती हैं ये बताइए।
1: हम होशंगाबाद जिला से बोल रहे हैं।
0: कौन?
1: छोटू मीना।
0: छोटू मीना
1: जी, बहुत दिन में कॉल लगा आपके तुम्हारे पास।
0: आप करते क्या हैं?
1: कुछ नहीं करते मैम, हम तो विकलांग हैं आँखों से।
0: अच्छा, विकलांग हैं आप?
1: आँखों से विकलांग हैं, घरे में ही रहते हैं।
0: अच्छा,
1: और हमारा भैया खर्चा पानी देते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: खाना माना भी नहीं बनाते।
0: अच्छा अच्छा,
1: चल पूरा काम में मैं ही कराती
0: हूँ। चलिए कोई बात
1: नहीं। बोल रही यानी कटे बेटी
0: है?
1: कौन आप कौन बोल रही है?
0: कविता, कविता दीदी बोल रहे हैं।
1: कविता दीदी, आए बाबा कविता दीदी, बहुत दिन बाद भाई आपसे।
0: हाँ, बहुत दिन बाद बात हो रही है ना। और आपकी क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है मैम, कॉल लगाते हम तुम्हारा कॉल लगता नहीं है।
0: अच्छा,
1: आदमी की पेट की लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लगता नहीं है।
0: चलो, लेकिन आप है ना छोटू जी, इतनी मुसीबतों के बावजूद रेडियो से भी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, रेडियो तो हमारी जान है।
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे जो प्रोग्राम देते हैं ना,
0: हाँ हाँ,
1: वो बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हारी बातों भी बहुत अच्छी लगती।
0: चलो, कुछ तो अच्छा लगता है आपको। अच्छा, ये बताइए कि अब आप है ना जैसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उस परिस्थिति में आप घबराते हैं या शांत मन से चलता है आपका काम? धैर्य रखे रहते हैं या घबराते हैं?
1: कौन हम?
0: हाँ,
1: घबराते क्यों हम?
0: नहीं घबराते?
1: नहीं नहीं नहीं, हम नहीं घबराते मैम।
0: अच्छा, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है।
1: ड्यूटी लगी है
0: आज, हमारी ड्यूटी है।
1: अच्छा, तो हमारा गाना बता दे, कल कल बता देना।
0: अच्छा, बता दीजिए। वैसे आज है ना हम जो से बात करेंगे और गाने हम लोगों की पसंद के होते हैं, कल सुन लेना 11 बजे से। आज तो ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? चलिए, ओके ओके।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि टीईटी में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें यह परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। यह मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुनेंगे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता है राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल।

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश रेलवे कॉलोनी बठिंडा से आई है। श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। अगली चिट्ठी मलकापुर महाराष्ट्र से आई है। श्रोता हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि, नीना जी, स्वप्निल और अजय। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। गीत लिखा शकील बदायूं ने, संगीतकार हेमंत कुमार। इस गीत के लिए फरमाइश सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादा। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शिकार से। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है बीड शहर से, महाराष्ट्र। श्रोता हैं प्रकाश, पराग, प्रदीप और केशव। अगले श्रोता खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया गीत को कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अगले श्रोता झालावाड़ से हैं हर्षिता, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर और प्रभुलाल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ अष्टवसु, नवग्रह, चाणक्य आदि राजनीति वेत्ताओं को नमन। सभी गुणीजन एवं सुधीजन को मेरा प्रणाम। मैं सोच रही थी, मैं क्या बोलूं? वैसे मैं चाहूं तो बहुत कुछ सुना सकती हूं, परंतु रामायण या महाभारत की कथाओं का तो कई बार गायन कर चुकी हूं, इसलिए आज सोचती हूं कि क्यों ना पंचतंत्र से कुछ सुनाऊं। पंचतंत्र, क्योंकि किंवदंतियां कहती हैं कि पंचतंत्र का नीति शास्त्र अद्भुत है। इस शास्त्र का जो निरंतर अध्ययन करता है, इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकते। अथ श्री पंचतंत्रम कथा। सुधीजन, दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा अमरशक्ति कल्प वृक्ष के समान उदार, प्रजा का संपूर्ण ध्यान रखने वाले एवं सभी कलाओं में निपुण थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। परंतु तीनों ही पिता के विपरीत अत्यंत अज्ञानी, अविवेकी एवं वाचाल थे। महाराज अमरशक्ति को यह दुख खाए जा रहा था।
1: हे ईश्वर, मुझे आपने सारे सुख दिए हैं, मेरा राज्य चारों ओर से सुरक्षित है, मेरी प्रजा सुखपूर्वक है, परंतु प्रभु, मेरे पश्चात मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? सच है, रूपवान, धनवान एवं भाग्यवान होने पर भी मूर्ख पुत्र का जन्म लेना माता के गर्भ को अपमानित करता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये ठीक रहेगा, कल मैं सभासदों से इस विषय में चर्चा करूंगा।
2: महिला रोग पे नगर के महाराज राजा अमर शक्ति

0: आप सब अपना आसन ग्रहण करें।
1: क्षमा चाहता हूँ महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपकी सभा में 500 से अधिक विद्वान उपस्थित हैं, उसके पश्चात भी।
2: महामंत्री सुमति, मैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर अत्यंत व्याकुल हूँ।
1: मेरा निवेदन है महाराज कि पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान एवं अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं, राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में भेज देना चाहिए।
2: मैं आशा करता हूँ पंडित विष्णु शर्मा मेरे पुत्रों को अति शीघ्र ही शिक्षित बना देंगे, परंतु क्या वे मेरे पुत्रों का दायित्व

0: तू लेंगे?
1: शुभ कार्य में देर किस बात की महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत उन्हें आपके समक्ष उपस्थित होने का निवेदन करूं।
0: जैसा आप उचित समझें।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा आपके सामने उपस्थित होने की इच्छा रखते हैं।
0: उन्हें ससम्मान सभा में ले आए।
1: जो आज्ञा।
2: प्रणाम महाराज, मैं वेदों के अध्ययन में लीन था, तभी सूचना मिली कि महाराज मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं। आज्ञा करें महाराज, एक दरिद्र शिक्षक आपके राजकीय कार्य में आपकी क्या सेवा कर सकता है?
0: हे विद्वान, मुझ पर अनुग्रह करके यदि आप मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत कर सकें, तो मैं आपको 100 गांव का अधिकार दूंगा।
2: क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु 100 गांवों का आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूंगा। अधिक क्या कहूं, परंतु आपके पुत्रों को शिक्षित करने में मैं स्वयं भी आनंद की प्राप्ति करूंगा। मैं अर्थलोलुप नहीं हूं, इंद्रिय सुखों से भी विरक्त हो चुका हूं। आप आज की तिथि अंकित कर लें, मैं पंडित विष्णु शर्मा आज ये सिंह घोषणा करता हूं कि आज से 6 मास के अंदर यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना दिया, तो आप मुझे मृत्यु दंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं।
0: हे देव, आपको कदाचित ये अनुभव नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का क्षण भर में ही समाधान कर दिया। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि मेरे पुत्र बड़े ही...
2: बस महाराज, बस। आज से ये आपकी चिंता मेरी चिंता है। आज पूनम की रात है, आज से ठीक 6 मास बाद आपके तीनों विद्वान पुत्रों को साथ लेकर ही मैं आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा महाराज।
3: मंत्रियों सहित महाराज भी विष्णु शर्मा की उस कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर चकित हो गए तथा राजपुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा की सेवा में सौंप कर निश्चिंत हो गए। उधर विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र के 5 प्रकरण बनाए, जिनका नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक थे, जिन्हें छोटी छोटी कहानियों से तैयार किया गया था। कहते हैं इन 5 प्रकरणों ने 6 मास में ही राजपुत्रों को अद्वितीय विद्वान बना दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मित्र भेद से प्रारंभ किया। वर्धमानो महान स्नेह
2: सिंहगो वृषयोर्वने पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशिता। एक नगर में वर्धमान नामक एक वैश्य रहता था। वो बहुत ही धनी था। उसने अपने सदुपायों से प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली थी। अंततः उसने धन का कहीं निवेश करने का सोचा।
4: उफ, नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं, धन को कहां लगाऊं? मेरे पास जो धन है उसका कहीं सदुपयोग तो करना चाहिए ना, पर करूं क्या? सत्य है कि धनवान व्यक्ति की गणना उत्तम पुरुषों में होती है। धनिकों के शत्रु भी उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उनके प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। इस सोचा विचारी में नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं, विद्वान कह गए हैं

0: धनोपार्जन के तो 6 तरीके हैं, सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। नौकरी? हाँ, नौकरी से तो सेवा का उचित मूल्य नहीं मिलता और साथ ही ऊंचे पद वालों की डांट भी सहनी पड़ती है। तब खेती? ये तो अत्यंत ही कष्टदायक है। ना बाबा ना, खेती बिल्कुल ना। तब फिर क्या?
1: एक उपाय है भैया, ब्याज पर पैसे चलाना।
0: ब्याज से पैसे चलाना? ना बाबा ना, ब्याज से पैसे चलाने वालों को भी धन डूबने का भय रहता है।
1: भिक्षा?
0: भिक्षावृत्ति भी कपटी लोगों के कारण निंदनीय हो चुकी है।
1: तब व्यापार?
0: हाँ, व्यापार ही सबसे उत्तम है भैया,
1: यही ठीक रहेगा।
0: मैं कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर व्यापार के लिए चल पड़ूंगा। अब आएगी

0: अरे सासुमा
1: ओ
0: सारी तैयारियां हो गई रे
1: ओ
0: अरे मौसम भी अनुकूल है हमें आज ही रवाना होना है।
2: अरे भाई वर्धमान
0: भैया
2: कहाँ की तैयारी है?
0: साधुमल जी आइए आइए।
2: हाँ।
0: भैया शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, जाने से पहले आप सबसे मिलना चाह रहा था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए।
2: अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है।
0: हाँ?
2: चलो इसी बहाने आपके दोनों बैल संजीवक और नंदक भी शहर घुमाएंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
2: हाँ।
0: बचपन से ही उन्हें हमने पाला है।
2: हाँ।
0: उनके बिना जी भी तो नहीं लगता हमारा। अच्छा भैया चलते हैं।
2: हाँ।
0: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार।
0: चलो चलो साथ हुआ। संभल के संभल के संभल के संभल के ये सातवा। अरे देख तो कितनी धूप चढ़ाई रे। बैल भी थक गए होंगे और बाकी सारे साथियों को भी भूख लग रही होगी। क्या करें रे
1: क्या करें फिर?
0: वो देख देख देख अरे जमुना नदी आ गई। चले जमुना किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और तब तक संजीवक और नंदक भी चराएंगे और विश्राम कर लेंगे।
1: तो जे बात तो हम कह रहे हैं।
0: जी कह रहे का?
1: सेठ जी जे आपने बहुत अच्छा किया। वो क्या कहते हैं हम सभी थक गए थे ना, आराम की तो सोच रहे थे, तो हम कहते कि आप भी तनिक विश्राम कर लो सेठ जी।
0: यही ठीक रहेगा यही ठीक रहेगा। अरे जाओ रे जाओ ए संजीवक नंदक जाओ चराओ जाके। ए सासुआ चला पेड़ की छाता ले आ जा।
1: चलो
0: ये सासुआ देख तो ये संजीवक आज कितनी मस्ती कर रहा है।
1: अरे बहुत मस्ती कर रहा है।
0: अरे अरे अरे, अरे ये तो जमुना नदी के किनारे जा रहा है। ए संजीवक जमुना किनारे ज्यादा मत जा रहे। अरे आगे दलदल है।
1: ए संजीवा
0: ये सुन रहे संजीवक को निकालने की जुगत ही नहीं हो रही। अब क्या होगा?
1: यही बात तो हम कहते सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
1: अरे जय की आप कब का क्या रुकोगे? अरे अंधेरा होवे को आया है।
0: क्या
1: अंधेरा? कहते कि एक बैल के कारण

0: आपके साथ ही कहीं शेर चीते के हाथ लग गए तो?
1: शेर चीते?
2: अरे लग गए भैया। अरे पर सारथा, अरे सारथा, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भैया? देख तो वो कितना अस्वस्थ दिख रहा है।
0: जी बात तो हम कह रहे सेठ जी।
2: क्या कह रहे हैं?
0: अरे आपको शायद ये ज्ञान नहीं है, ये जंगल में ना डाकुओं का भी बड़ा आतंक है।
2: अरे क्या कह रहे डाकू?
0: अरे डाकू डाकू
2: भैया,
0: कहते कि ईश्वर ना करे अगर कुछ।
2: अरे चुप चुप। अरे भैया मेरा भी शेर चीते भी डाकू भी। तुम शायद ठीक कहते हो, परंतु संजीवक को?
0: अरे यही बात तो है। आप तो निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ रुकत है और संजीवक को निकाले का कोई जुगाड़ करत है, और जाके उबरते ही हम जाको लेके शहर आ जाएंगे। बस
2: पक्को पक्को
0: पक्को, आप तो जाओ।
2: ठीक है भैया, हम निकल ले, यही ठीक रहेगा। चलो भैया चलो आगे बढ़ो। ए भैया संजीवक को लेके आ जाना।
0: अरे हम जरूर आ जाएंगे संजीवक को लेके।
2: भैया
0: आ जाओ,
2: जा रहे हैं साथ में।
0: जाओ
2: संजीवक को लेके आना भैया।

0: और फिर सेठ जी संजीवक को छोड़कर चल दिए। कहते हैं समझदार लोग छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज का नुकसान नहीं करते। उधर सार्थवाह भी एक पेड़ की डाली पर सो गया और रात बीतने लगी।
1: सवेरा होने को आया, देखें तो संजीवक की का दशा है। अरे अरे, हमें तो लगता ही नहीं कि ये कभी निकल पाएगा। तो हम कितने दिन तक जाके लिए प्रतीक्षा करें? अरे ये तो ऐसे ही मर जाएगा, यही बात तो हम कह रहे हैं। हम कहे जाके लिए अपनी जान को विपदा में डाले। हम तो जाको इधर छोड़ के चले चलते।
0: सार्थवार ने शहर जाकर वर्धमान को संजीवक की मृत्यु का झूठा समाचार दे दिया। दुखी मन से वर्धमान ने उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया। परंतु इधर की कहानी तो कुछ और ही थी। आयु शेष होने के कारण संजीवक बच निकला। यमुना जल से मिश्रित वायु एवं सुनहरी घास को खाकर वो काफी हृष्ट पुष्ट हो गया। पूरे जंगल में हुंकारता फिरता था। एक बार उस जंगल में पिंगलक नामक शेर अपने साथियों सहित यमुना में अपनी प्यास बुझाने आया।

0: ये किसके हुंकार है भाई? मेरे तो सारे शरीर में कंपन होने लगा। नहीं नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, अवश्य विदेश से आया है। बाप रे बाप, अपने प्राण बचाओ। अरे करकट तमनक
1: जी महाराज,
0: शीघ्र ही सभी सामंत गणों को लेकर वटवृक्ष के नीचे आ जाओ।
1: जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज आप चलें, हम सभी को लेकर आते हैं। भाई दमनक, सभी को ले चलो यहाँ से। क्यों दमनक, हम सियार हैं तो क्या? हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं? जब सिंह राजा ने हमें मंत्री पद से हटा ही दिया तो क्यों हम राजा की सहायता करें?
2: परंतु हमारे स्वामी पिंगलक आज भयभीत, मैं उनके भय का सही कारण जानकर उपाय सोचूंगा।
1: हाँ, आपने कैसे जाना कि स्वामी भयभीत है?
2: इसमें जानने की क्या बात है, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही बातों को समझ

0: लेते हैं।
1: क्या आप कैसे महाराज को अपने वश में करेंगे?
0: अरे करकट देखो, राजा के प्रति एक सेवक का क्या कर्तव्य होता है बताओ।
1: मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
2: सच कहते हैं, सागर और पर्वत की परिधियां ज्ञात हो सकती हैं, पर मनुष्य का मन ना बाबा ना। तो सुधी जन, अब दमनक तो पिंगलक के पास चला।
0: महाराज को दास का प्रणाम। एक निवेदन है महाराज, आप पानी पीने गए और बिना जल ग्रहण किए ही लौटकर इस प्रकार क्यों बैठ गए?
3: दमनक, दूर से आ रही उस ध्वनि को सुन रहे हो? जान पड़ता है कोई अद्भुत जीव आ गया है। आवाज से लगता है कोई पराक्रमी होगा।
0: क्षमा करें महाराज, परंतु सिर्फ आवाज को सुनकर इस प्रकार

0: गए।
1: दमयक, दूर से आ रही उस ध्वनि को सुन रहे हो? जान पड़ता है कोई अद्भुत जीव आ गया है। आवाज से लगता है कोई पराक्रमी होगा।
0: क्षमा करें महाराज, परंतु सिर्फ आवाज को सुनकर इस प्रकार भयभीत होना उचित नहीं। कहते हैं अत्यंत बलवान और भयप्रद शत्रु के आक्रमण करने पर भी जो राजा धैर्य नहीं खोता वो राजा कभी भी पराजित नहीं होता।
1: परंतु दमयक, मैं क्या करूं? मेरा संपूर्ण अनुयायी वर्ग भय से त्रस्त है, भागना चाहता है। मैं इस स्थान पर एकाकी कैसे रह सकता हूँ?
0: महाराज, आप यहाँ इसी स्थान पर धैर्य पूर्वक मेरी प्रतीक्षा करें। मैं जाकर आवाज के वास्तविक कारण को समझ कर आता हूँ। मेरे लौटने के बाद ही आप जैसा उचित समझे कीजिएगा।
1: यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
0: जैसी आज्ञा महाराज।
1: मैंने दमनक पर विश्वास करके क्या ठीक किया? कहीं मंत्री पद से हटाए जाने का बदला तो नहीं ले रहा? मेरे शत्रु को लाकर मुझे मारने की इच्छा तो नहीं रखता? नहीं नहीं, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर छुप जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा।
2: महाराज ने मुझ पर बहुत भरोसा किया।
0: अब मैं करकट को बताऊंगा कि वास्तविक सेवा वृत्ति क्या होती है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे, झाड़ियों के पीछे ये कौन है? ये तो एक बैल है। वाह वाह, भगवान की कृपा से ये बड़ा अच्छा हुआ। इस बैल की हमारे महाराज सिंह से मित्रता करवाकर पुनः शत्रुता करवाऊंगा। और संधि विग्रह की इस नीति से पिंगलक को अपने वश में कर लूंगा।
2: अरे दुष्ट बैल, इधर आओ। अरे महाराज, पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं। इस वन प्रांत में व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हो?
3: भद्र, ये पिंगलक कौन है?
0: अरे तुम महाराज पिंगलक को नहीं जानते? वे इस वन के स्वामी सिंह हैं, तुम्हें अभी बुला रहे हैं।
3: वे भद्र, आप बड़े ही उदार एवं सज्जन लग रहे हैं। यदि आप मुझे वहाँ ले चलना ही चाहते हैं तो महाराज से मुझे अभयदान दिलवाने की कृपा कीजिएगा।
0: हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं जाकर देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप तब तक यहीं बैठे रहिए।

0: महाराज की जय हो।
1: क्या सूचना लाए हो दमनक?
0: महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस आवाज का पीछा किया। वो कोई सामान्य जीव नहीं है, भगवान शंकर का वाहन महावृषभ नंदी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर ने उसे संपूर्ण वन में स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दी है।
1: तभी मैं सोचूं, एक तृणभोजी पशु इस भयंकर वन में निडर होकर कैसे घूम रहा है। वैसे दमनक, तुमने उससे क्या कहा?
0: हे स्वामी, मैंने भी उससे कह दिया कि ये वन चंडिका के वाहन सिंहराज पिंगलक का है, अतः आप हमारे अतिथि हैं। मैं स्वामी पिंगलक की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया चलकर जलपान ग्रहण करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आनंद पूर्वक विहार करें।
1: वाह मंत्री श्रेष्ठ दमनक, ऐसा लगता है आपने मेरे मन की बात कह दी। जाएं और शीघ्र ही उन्हें आदर पूर्वक ले आए।
0: जी महाराज, जाता हूँ।
2: अम्मा, हाँ वाह दमनक भाई।

0: दाता महाराज ने, क्या उन्होंने मुझे अभय दान दिया?
1: अभय दान की क्या बात करते हो? मैं महाराज से कुछ कहूं और वो टाल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप निर्भय होकर उनके पास चलें, वहां मित्रता पूर्वक रहेंगे। परंतु मित्रता के मद में मुझे भूल मत जाएं, नहीं तो आपकी दशा दंतिल सेठ के समान हो जाएगी।
0: अम्मा, ये दंतिल सेठ कौन है भाई?
2: उस दुष्ट दमनक ने कैसे अपना खेल शुरू कर दिया, पिंगलक के सामने भी अपने को शेष साबित कर लिया और संजीवक को भी मुट्ठी में कर लिया। उसने संजीवक को दंतिल की कथा सुनाई, परंतु हम ये कथा सुनेंगे पंचतंत्र की अगली कड़ी में, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की पहली कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है। इसमें ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य साथ ही भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर फैसले में कहा है कि जो भी छूट दी जानी थी वे पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं, उन्हें टीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देना होगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत एस भोंडवे ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी के ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा।

बेचारा कहते हैं, हुनर हाथों की पहचान नहीं, आत्मविश्वास की उड़ान होता है। हुनर इंसान को केवल काम नहीं सिखाता।

बल्कि स्वयं पर विश्वास करना भी सिखाता है। आत्मविश्वास वहीं खिलता है जहां हुनर और मेहनत मिलते हैं। इसलिए अपने हुनर को पहचानो। जो अपने हुनर पर भरोसा रखता है वो ही हर मुश्किल को आसान बनाता है। तो आप अपने हुनर को बढ़ाते रहिए और आत्मविश्वास को मजबूत करते रहिए। इसी कामना के साथ आज आपके बीच हूँ महिला सभा कार्यक्रम को लेकर आपकी रेडियो मित्र गुड़िया तिवारी। स्वीकारिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार। इसी के साथ करते हैं आपका स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम महिला सभा में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे। आज डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज विभिन्न सोशल साइट्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी ने संवाद और जानकारी साझा करने को बेहद आसान कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। एक तरफ सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी बात रखने, अपने विचार साझा करने और समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है। ये शिक्षा, रोजगार के अवसर भी देता है। रोजगार के नए अवसर यहाँ से तलाश सकती हैं। कई महिलाएं इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यवसाय को भी बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। और सोशल मीडिया के इसी बढ़ते उपयोग के चलते खतरे भी ज्यादा सामने आ रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियां और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। फेक प्रोफाइल और धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। नकली पहचान बनाकर लोगों को ठगने का काम भी हो रहा है और प्राइवेसी का उल्लंघन, व्यक्तिगत फोटो और जानकारी का गलत इस्तेमाल भी होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अश्लील संदेश, धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तो बात हुई उन चुनौतियों की जो मुख्यतः सामने आ रही हैं। बात करें सुरक्षा उपायों की, तो महिलाओं को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत हो, यानी अपनी प्रोफाइल को केवल विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रखें। अनजान लोगों से सावधान रहें। अनजान अकाउंट से भेजी रिक्वेस्ट या संदेश को स्वीकार करने से पहले जांचें। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, जैसे पता, फोन नंबर आदि। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। किसी भी गलत व्यवहार की शिकायत प्लेटफॉर्म पर जरूर करें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से पासवर्ड बदलते रहें। भारत में महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। साइबर क्राइम के अगेंस्ट कदम मजबूती से उठाए जा रहे हैं। जरूरत है इसके प्रति जागरूक होने की। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। ऐसे में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षित उपयोग हेतु सतर्कता और जागरूकता दोनों जरूरी है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें तो इसके लाभ भी उठाए जा सकते हैं, पूरी तरह सुरक्षित भी रह सकते हैं। बस जागरूक बने, सतर्क रहें। तो ये तो अभी हमने आपसे थोड़ी सी बातचीत की सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा, और इस बातचीत के बाद आपको ले चलते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं सन 2000 में आई फिल्म देवदास का मशहूर गीत बेहद माधुर्य से भरा बैरी पिया। ये राग मिस भैरवी पर आधारित है। हालांकि और भी रागों के जो फेजेस हैं उनको शामिल किया गया है। यदि इस गीत की विशेषता की बात करें तो ये राग भैरवी या मिश्र भैरवी पर है, जो आमतौर पर करुणा, प्रेम और विरह के भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। संगीत निर्देशक की बात करें तो इस गाने का जो संगीत निर्देशन किया है वो किया है इस्माइल दरबार ने। इसमें जो गायन स्वर हैं वो है श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। और इस गीत से जुड़ी एक बात और बता दें, श्रेया घोषाल का ये डेब्यू गीत था और इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और इस गीत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है गाने के बीच बीच में श्रेया घोषाल द्वारा इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जो नायिका है उसकी मासूमियत और चंचलता को दर्शाने के लिए किया गया है, जो इस गीत का खास हिस्सा भी है। इस गीत के जो बोल हैं वो लिखे हैं नुसरत बद्र साहब ने। तो इतनी सारी विशेषताओं को समाहित किए है ये गीत। आइए अब ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहरी पिया। अभी आपने फिल्म देवदास का ये गीत सुना श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में। नुसरत बद्र के शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम अभी और भी है, मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत करते हैं महिला सभा कार्यक्रम में। आज के समय में महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से मेहनत के दम पर समाज में एक नई पहचान भी बना रही हैं। खासकर सिलाई कढ़ाई और फूड बिजनेस जैसे क्षेत्रों में महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही बल्कि सम्मान भी पा रही हैं। सिलाई कढ़ाई एक ऐसा कौशल है जिसे महिलाएं घर बैठे आसानी से सीख सकती हैं, सिखा भी सकती हैं। महिलाएं ड्रेस को तैयार कर डिजाइनर ड्रेस बनाकर या कढ़ाई का काम करके अच्छी आय अर्जित भी कर सकते हैं। बुटीक खोलना, ऑनलाइन ऑर्डर लेना और लोकल मार्केट में कपड़े बेचना, ये सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सभी कार्य काफी कम निवेश के साथ भी शुरू किए

0: किए जा सकते हैं और धीरे धीरे इन सबको बड़े व्यवसाय में भी बदला जा सकता है। वहीं फूड बिजनेस स्वाद से सफलता का रास्ता बनाता है। खाना बनाना हमारे घर की जरूरत है और यही हुनर बिजनेस में बदल सकता है। महिलाएं घर से टिफिन सर्विस, केटरिंग, बैंकिंग या अचार पापड़ का काम भी शुरू कर सकते हैं। आजकल होममेड फूड की काफी मांग भी है, जिससे इस क्षेत्र में विस्तार भी हो रहा है, अवसर भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से महिलाएं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हैं आसानी से। जब महिलाएं अपने हुनर से कमाती हैं तो उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है। वे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान देती हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनती हैं। सरकार भी महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन उनसे निपटा जा सकता है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर, समय का सही प्रबंधन कर, छोटे स्तर से शुरू कर धीरे धीरे विस्तार करके आगे बढ़ा जा सकता है। सिलाई कढ़ाई और फूड बिजनेस महिलाओं के लिए ऐसे क्षेत्र हैं जहां वे अपने हुनर को पहचान दे सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास हो, क्लियर विजन हो, तो हर महिला अपने जीवन में सम्मान और सफलता दोनों प्राप्त कर सकती है। तो ये तो आपसे हमने बातचीत की, हुनर से पाएं सम्मान, सिलाई कढ़ाई और फूड बिजनेस, और इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने बात की फूड बिजनेस की, लेकिन अभी हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग से कैसे बचना है, क्योंकि आजकल शादी विवाह भी हो रहे हैं तो बाहर का खाना भी हो रहा है। ऐसे में हम फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें, इस पर आपको सुनवाते हैं वार्ता फूड पॉइजनिंग से बचें। वार्ताकार हैं डॉक्टर आरपी गुप्ता, तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज की वार्ता का विषय है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हमारे समाज में बहुत ही आम बीमारी है और इससे परिवार में काफी लोग पीड़ित होते हैं। प्रायः फूड पॉइजनिंग दूषित सड़े गले खाद्य पदार्थ एवं दूषित पानी के उपयोग के कारण शरीर में संक्रमण पैदा हो जाता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कम्युनिटी में फूड पॉइजनिंग बहुत आम बीमारी है। इस बीमारी से कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, लेकिन महिलाओं एवं बच्चों में इस बीमारी का इंसिडेंस पुरुषों की अपेक्षाकृत अत्यधिक होता है। विशेष तौर पर गर्भवती एवं धात्री महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित होने पर गंभीर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं, जिस कारण गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को खतरा पैदा हो सकता है। भारतीय परिवेश एवं परंपरा के मुताबिक अधिकांश महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों को भोजन कराने के बाद बचा हुआ, रखा हुआ या दूषित खाद्य पदार्थों का उपयोग करती हैं, जिस कारण से महिलाएं फूड पॉइजनिंग की बीमारी से पीड़ित हो जाती हैं। बच्चों में फूड पॉइजनिंग की बीमारी होने से बच्चों के शरीर में पानी की कमी पुरुषों की एवं बड़ों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक

0: को ठीक तरह से साफ होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग हमारी समाज में कॉलरा, एंट्राइटिस, साल्मोनेला, सिगेला, डिसेंट्री, जीआरडीसिस और अमीबाइसिस के रूप में होती है, जिनकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग पहचानते हैं। ये लक्षण इस प्रकार होते हैं, अगर कोई व्यक्ति फूड पॉइजनिंग की बीमारी से पीड़ित होता है तो उसको सिर में दर्द एवं चक्कर आते हैं, व्यक्ति को उल्टी की इच्छा हो सकती है, व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, बुखार ठंडी देके आता है, इत्यादि लक्षण यदि किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसको फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग में उल्टी दस्त के कारण पीड़ित व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, व्यक्ति बेहोशी की हालत में चला जाता है। फूड पॉइजनिंग की बीमारी में सर्वप्रथम यदि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग होती है तो हमें पानी की कमी को रोकना चाहिए। यदि हम पानी की कमी को रोक सकते हैं तो फूड पॉइजनिंग की बीमारी से होने वाले गंभीर परिणाम कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम पानी की कमी को कैसे रोकें। मार्केट में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर एवं ओआरएस पाउडर उपलब्ध होते हैं। हमारे गांव में, शहरों में जो जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, उनके यहाँ डिपो, आंगनबाड़ी वर्कर के यहाँ ऐसे डिपो बनाए गए हैं, इलेक्ट्रोल ओआरएस पाउडर उपलब्ध रहते हैं, वहाँ से आप ओआरएस पाउडर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एडल्ट है, 14 साल से ऊपर है, तो उसको हर उल्टी, हर दस्त के बाद एक ग्लास पानी ORS सॉल्यूशन का देना चाहिए। यदि वो 7 साल से 14 साल तक का मरीज है तो उसको आधा ग्लास पानी हर उल्टी, हर दस्त के बाद देना चाहिए। यदि 7 साल से छोटा है तो उसको 1/4 ग्लास हर उल्टी, हर दस्त के बाद ORS का घोल देना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस के दौरान और फील्ड में काम करने के दौरान या एपिडेक्स किसी कारणवश आपको ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर उपलब्ध नहीं होता है तो हम घर में ही इस सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल की विधि बहुत ही आसान है। जीवन रक्षक घोल की बनाने की विधि में हमें 1 लीटर पानी, उसमें 1 चम्मच शक्कर एवं 1 चुटकी नमक 1 लीटर पानी में मिला दें तो आपका 1 लीटर जीवन रक्षक घोल तैयार हो जाएगा और इसको हर उल्टी, हर दस्त के बाद आपको मरीज को देना है। अगर इस घोल को आप नियमित रूप से उस मरीज को देते रहेंगे तो उसके हम शरीर में होने वाली पानी की कमी को बचा सकते हैं। इसके बाद यदि मरीज को बुखार आता है, सिरदर्द की शिकायत होती है तो हमें उसको टेबलेट देना चाहिए। इसके बावजूद अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है या उसके उल्टी दस्त का नियंत्रण नहीं हो रहा है तो किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। सर्वप्रथम फूड पॉइजनिंग की बीमारी में यदि हम कम्युनिटी में अवेयरनेस, जागृति पैदा कर दें तो इस फूड पॉइजनिंग की बीमारी से बचा जा सकता है, यानी इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। इसके बचाव के लिए बहुत ही साधारण बातें हमें ध्यान में रखनी होती है जो हमारे समाज के, परिवार के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। इसके बचाव के लिए सर्वप्रथम जिस खाद्य सामग्री का हम उपयोग करते हैं वो बहुत अधिक समय तक रखी नहीं होना चाहिए, सड़ी गली नहीं होना चाहिए। इसको उपयोग करने से पहले हम ध्यान से ये देख लें कि हमारी खाद्य सामग्री दूषित तो नहीं है। यदि दूषित है तो इस तरह की खाद्य सामग्री से हमें बचना चाहिए। अगर इस तरह की खाद्य सामग्री से हम बचाव करते हैं निश्चित तौर पे फूड पॉइजनिंग की बीमारी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है दूषित पानी। दूषित पानी में पानी का हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण के लिए शासन द्वारा हर गांव में, हर शहर के मोहल्ले में घड़े में डालने वाली क्लोरीन टेबलेट, कुओं में डालने वाले ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध हैं। उनको आप डिपो से प्राप्त कर इस क्लोरीन टेबलेट का और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट, 20 किलो पानी में 1 क्लोरीन टेबलेट डालनी होती है। उससे हम अपने पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं और उसमें बैक्टीरिया, वायरस को हम नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा, हमें किसी रेस्टोरेंट में ठेलों पे खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है उसको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए कि इसकी खाद्य सामग्री दूषित तो नहीं है। इस तरह हम इस होने वाली गंभीर बीमारी से बचाव कर सकते हैं।
1: फूड पॉइजनिंग से बचें। अभी आपने ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थे डॉक्टर RP गुप्ता और उम्मीद है इस वार्ता के माध्यम से आपको भी फूड पॉइजनिंग से कैसे बचना है इसके उपाय मिले होंगे। इस वार्ता के बाद चले आपको एक बार फिर ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। लेकिन जैसे कि मेरा प्रयास रहता है गीत से जुड़ी कुछ जानकारियां भी आपको बताई जाए। ये लाल इश्क, ये जो

गीत है, इसमें राग बिहाग के स्वरों का एक अद्भुत मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये गाना बॉलीवुड का एक बेहतरीन गाना बना। इस गीत को अरिजीत सिंह ने गाया है, जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज से इस गीत को और भी रूहानी बना दिया है। संगीत निर्देशन है संजय लीला भंसाली का। गाने में प्रेम की तीव्रता, त्याग और जुनून को दर्शाया गया है। और इस गीत की शब्द रचना की बात करें तो इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत, और ये गीत लिया है हमने फिल्म रामलीला से।

ये लाल इश्क। अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म थी रामलीला। सिद्धार्थ गरिमा के शब्दों को संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसाली ने। तो शास्त्रीयता की विशेषताएं लिए हुए ये गीत तो हमने सुन लिया है और अब आपको ले चलते हैं सौंदर्य सलाह की ओर। गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण बढ़ जाता है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी त्वचा और बालों पर पड़ता है। गर्मियों में बाल रूखे, बेजान, ज्यादा कमजोर होने लगते। पसीना अधिक आने से सिर में खुजली, डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए इस मौसम में बालों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है। सबसे जरूरी बात है कि बालों को साफ रखें, क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आने से बालों में गंदगी जमा होने लगती। तो इससे बचने सप्ताह में 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बालों को धोएं। इससे आपके जो हेयर

करते हैं जो बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। इस मौसम में गर्म उपकरणों का कम उपयोग करें, जैसे हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लर का उपयोग हो सके तो कम ही करें, क्योंकि ये बालों को कमजोर करते हैं, इससे बचें। गीले बालों को बांधने से बचें, गीले बाल कमजोर होते हैं, इन्हें तुरंत कसकर ना बांधें, बालों को ठीक से सुखाएं और फिर बांधें। केमिकल वाले प्रोडक्ट उपयोग करने के बजाय आप घरेलू उपाय अपनाएं, जैसे दही, एलोवेरा, मेथी, आंवला आदि प्राकृतिक चीजों का हेयर मास्क बनाकर लगाएं, इससे बाल मुलायम और स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह गर्मी से थोड़ी सावधानी बरतकर आप अपने बालों को स्वस्थ सुंदर रख सकते हैं। स्वस्थ बाल न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। तो ये तो आपसे बात की गर्मियों में बालों को स्वस्थ रखने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और इसी के साथ चलने का समय हो गया है। तो आप इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए। इसी तरह जानकारी मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए अंक के साथ। अभी अनुमति दें गुड़िया तिवारी को। नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और आकाशवाणी के ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: थोड़ी देर में अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक एक गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म शिकार से। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म ये इश्क नहीं आसान, इस फिल्म से आवाज अनवर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देवास जिले के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभागायुक्त और कलेक्टर मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये एक दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और आईटीआई को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, आईसीएआर और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिला

को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए 78 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के
1: 9:00 आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
0: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
2: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार

के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा

0: मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिन फिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का

0: कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का एक गाना। आवाजें हैं लता आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत और इसकी फरमाइश हम गाने के बाद बताएंगे। सुनते हैं पहले।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजपूत।

ये गाना लिया था हमने फिल्म राजपूत से, आवाज मोहम्मद रफी की थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल डोमड़े और अर्जुन गनेकर। और इन्होंने ये खत लिखा है, कहाँ से लिखा है इसमें मैं तलाश कर रहा हूँ, इन्होंने जगह का नाम नहीं दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली बार आप जब भी पत्र लिखें तो उसमें जगह का नाम जरूर लिखें जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। अगला गाने के, इसी गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है, ग्राम फ्रांसी से लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी सर जी।

सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हांसी शहर से लिखने वाले हैं, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफी की आवाज में, और इस गाने को फिल्म खुदा कसम से लिया गया है। साथ में दूसरी आवाज है आशा भोसले की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। लिखने वाले हैं बत्ता परिवार के लोग, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद खान। गांधी बाग अकोला से रतन कटनकर और वैशाली कटनकर। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका,

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देवास जिले के टोंककला गांव की पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है और दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री शंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ की यह योजना अदरक की खेती और वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और

पर। और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर। रात 8 बजे का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत और 9:30 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित विधुर मलिक का ध्रुपद गायन, राग होगा राग केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आज के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। थोड़ी देर में हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5 बजे से इसी मीटर बैंड पर आप मीडियम वेव पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का

नमस्कार। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और मीडियम वेव 444.94 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आज की हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युवाणी।

0: स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त खुशी गंधी और मेरे साथ हैं
1: महिमा दी पटेल।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: साथियों, आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ करते हैं, तो खुशी बिना किसी देरी के अपने श्रोताओं को ले चलते हैं आज की पहली चर्चा की ओर,
0: जिसका विषय है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथियों, जैविक खेती आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है।
1: हाँ खुशी, यह केवल खेती का एक तरीका नहीं बल्कि धरती माँ को रसायन मुक्त करने और इंसानों को स्वस्थ रखने का एक पवित्र अभियान है।
0: बिल्कुल सही कहा महिमा तुमने। साथियों, जैविक खेती का अर्थ है खेती की वो पद्धति जिसमें रासायनिक खादों यानी केमिकल फर्टिलाइजर और जहरीले कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है।
1: जी हाँ साथियों, अब हम मिट्टी की सेहत की बात करें तो जैविक खेती का मुख्य आधार मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी में जीवांश यानी कार्बन की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा महिमा तुमने। साथियों, जैविक खेती में एक ही खेत में बार बार एक ही फसल नहीं उगाई जाती, फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है ताकि मिट्टी के पोषक तत्व बने रहें और कीटों का चक्र टूट सके,
1: जिसको हम कहते भी हैं क्रॉप रोटेशन। साथियों, प्राकृतिक कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए हानिकारक रसायनों के बजाय नीम का तेल, गौमूत्र, दशपर्णी अर्क और खट्टी छाछ जैसे घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों को है। इससे मित्र कीट जैसे केंचुआ सुरक्षित रहते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, जैविक खेती में केंचुओं को किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। केंचुआ खाद मिट्टी की जल धारणा क्षमता को बढ़ाती है और पौधों को भरपूर पोषण भी देती है।
1: हाँ खुशी, और अब हम आते हैं बीज चयन के ऊपर, तो इसमें संकर मतलब हाइब्रिड या जीएमओ बीजों के बजाय पारंपरिक और देसी बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। ये बीज स्थानीय जलवायु के प्रति अधिक सहनशील होते हैं।
0: बिल्कुल, और महिमा तुम क्या जानती हो, जैविक खेती में पानी की बचत भी होती है क्योंकि जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी नर्म और स्पंज जैसी हो जाती है, जिससे वो अधिक समय तक नमी सोखकर रखती है। इससे सिंचाई में कम पानी की आवश्यकता होती है।
1: ये तो बढ़िया बात बताई खुशी तुमने, और लागत की कमी भी होती है क्योंकि खाद और कीटनाशक घर पर ही तैयार किए जाते हैं, इसलिए किसान को बाजार से महंगी दवाइयां और खाद नहीं खरीदनी पड़ती। इससे खेती की लागत काफी कम हो जाती है।
0: बिल्कुल साथियों, जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए वरदान है। जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां और अनाज रसायनों से मुक्त होते हैं। इनसे

0: विटामिन मिनरल की मात्रा अधिक होती है जो हमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से दूर रखते हैं।
1: साथियों, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो यह पद्धति जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकती है।
0: साथियों, आज की दुनिया भर में ऑर्गेनिक फूड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है।
1: जैविक उत्पादों की कीमत सामान्य उत्पादों से अधिक मिलती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
0: बिल्कुल साथियों, जैविक खेती सर्वे संतु निर्माया यानी सभी निरोगी रहें के मंत्र पर आधारित है। ये हमें जहर मुक्त भोजन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित धरती देने का सबसे बेहतरीन रास्ता है।
1: तो साथियों, अभी हमने आपको जानकारी दी जैविक खेती के बारे में और मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में। आइए अब आपको ले चलते हैं गुरुवार विशेष कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम की ओर, फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सुरंग जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स में।
1: मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, वहाँ कैसा मौसम है?
1: बस यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, लू चल रही है इस वक्त।
0: लू चल रही है तो आप ध्यान रखिएगा अपने परिवार का भी, कि आप लोग बाहर निकले तो पूरी सुरक्षा के साथ निकले, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है अभी।
1: जी
0: तो आपकी क्या फरमाइश है आज की?
1: हिम्मत।
0: हिम्मत मूवी से कौन सा गीत?
1: गाने के बोले साथिया अब तेरे बिन जाने ना।
0: जी आपसे बात करके हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और आप हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं तो अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन मथुरा में काफी गर्मी हो रही है, चिलचिलाती हुई धूप रहती है और गर्म गर्म हवाएं चलती हैं। लगता है कि लू का प्रकोप अब प्रारंभ होने वाला है।
0: बिल्कुल, मई का महीना है तो लू का प्रकोप तो हर जगह ही है।
1: इसके क्या है कि विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और बचें कि 11 से लेकर 4 बजे तक धूप में न निकले, सुबह शाम अपने कार से निकल जाए और अपने कार संपन्न करके वापस आ जाए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बस यही बोलने वाली थी। आप अब हमें बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, किस फिल्म का?
1: आज परिवार दिवस पे, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आज हम मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। ये तो सच है कि भगवान है, ये गीत सुना दीजिएगा परिवार दिवस पर।
0: हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा है। और
1: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार
0: जी।

ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है।

0: हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं जिला राजग्राम पहाड़ीपुर से रामनाथ बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं?
0: मैं तो बढ़िया हूँ।
1: और बाकी सब ठीक ठाक है?
0: हाँ, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। आप बताइए, वहाँ सब बढ़िया है? गर्मी पड़ रही है
1: जी?
0: गर्मी पड़ रही होगी वहाँ पे?
1: जी गर्मी पड़े, कल हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज हुई, ओले बहुत गिरे हैं, आंधी तूफान इतना ज्यादा आ गया। लेकिन
0: अरे,
1: वहाँ मौसम ठीक है?
0: हाँ, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। फरमाइश क्या है आपकी आज की?
1: जी मुझे फिल्म धरती का है पुकार के, फिल्म का नाम है, गाने के बोल है जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी।
0: जी बहुत ही अच्छा गाना है ये, और हम आपको सुनाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। आप आज हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: नमस्ते, मैं राजेंद्र कुमार यादव बोल रहा हूँ ग्राम सोरखी से।
1: नमस्ते राजेंद्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी मैम, मुझे गाना सुनना था ताल फिल्म का।
1: ताल फिल्म का कौन सा? हाँ जी, ताल फिल्म का कौन सा?
0: ताल फिल्म का मैम टाइटल सॉन्ग है ताल से ताल मिला।
1: बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी। और आप हमारे आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं?
0: मैम आकाशवाणी से तो मैं कम से कम मुझे 15 साल से ऊपर हो गया जब से जुड़ा हूँ।
1: 15 साल से ऊपर?
0: और सभी कार्यक्रम सुनता हूँ और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं अभी।
1: जी जी जी, बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी आकाशवाणी।
0: मेरा ये पसंदीदा कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
1: अच्छा, हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। जी जी, हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप हमारी आकाशवाणी से इतने समय से निरंतर जुड़े हैं और आप हमारे सारे कार्यक्रमों को पसंद भी करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके जो गाना है उसको हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: सर, मैं शिवोला बात कर रहा हूँ।
1: जी, स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में।
0: बांदा यूपी से।
1: जी, स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। बताइए, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया मैम, आप बताइए कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ, यहाँ सब लोग बढ़िया हैं।
0: जी मैम, मुझे आकाशवाणी छतरपुर से बहुत ही प्यार है। मैडम, मैं 2007 से आपका प्रसारण सुन रहा हूँ।
1: वाह, क्या बात है, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बताइए, आपकी क्या फरमाइश है?
0: जी, मुझे गाना सुनना है शक्तिमान का, कैसे मैं भुलाऊं तेरी यादें।
1: शक्तिमान का?
0: जी,
1: क्या बात है। तो हम आपको आपके पसंद का गीत सुनवाएंगे, कार्यक्रम में आपके गीत को शामिल करेंगे। और वहाँ का मौसम बढ़िया है?
0: जी मैम, यहाँ पर आंधी तूफान आता रहता है, बाकी अभी तो मौसम ठीक है।
1: चलिए, आप गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आज आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत खुशी हुई।
0: जी मैम, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैम, मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
1: जी सूर्य प्रताप जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हैं?
1: बहुत ही बढ़िया। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: मौसम तो काफी धूप है मैम, और मतलब लू भी काफी चल रही है।
1: मई का महीना है तो लू चलना तो लाजमी ही है, तो इस गर्मी के मौसम में आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप हमें बताइए,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: मेरा नाम खुशी है।
0: अच्छा
1: जी, तो आप हमें अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: मैम, फिल्म का नाम है दिव्य शक्ति।
1: दिव्य शक्ति फिल्म का।
0: और गाने के बोले, आपको देखकर हमको ऐसा लगा।
1: हाँ जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो फ्रेंड से
0: जी। हेलो फ्रेंड से बात कर रही हूँ
1: जी। हाँ हेलो फ्रेंड से जी, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ मनकारी से
0: जी। फूलचंद जी, स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। आपका शुभ नाम?
0: मैं महिमा बात कर रही हूँ।
1: बहुत बढ़िया, कैसी है महिमा जी आप?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया है, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, आनंद तो शायद ही ले सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, गर्मी बहुत तेज है। सारे श्रोताओं से निवेदन है कि बहुत ही बचाव करें और पानी पी कर रहे।
0: आप भी अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आप बताइए आपकी फरमाइश
1: जी। महिमा जी, अभी शादियों का मौसम है और बरातें भी जो है बहुत ज्यादा अभी चल रही है, तो एक बरात वाला गीत है। ये
0: कौन सा?
1: फिल्म का नाम है जिगर वाला। हाँ, फिल्म का नाम है जिगर वाला। गीत के बोले के चले हैं बराती बंधन की
0: जी। हम आपका गीत शामिल करेंगे कार्यक्रम में। आज आप हमसे जुड़े, हमें बड़ी खुशी हुई। नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 장애매 하시려세 군대는 장애매.
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्कार. हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: हेलो फ्रेंड्स से.
1: हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स से. आप
2: जी बसाई दरवाजे से राकेश वर्मा बोल रहे हैं.
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में.
2: जी जी, आप दीदी कौन सुन रहे?
1: जी मेरा नाम खुशी है, खुशी गंधी.
2: फिल्म रहेगी जानी दुश्मन, चलो रे डोली उठाओ कहार, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है.
1: हाँ
2: तो इसीलिए हमने ये सोचा कि यही वाले गीत भी.
1: बहुत ही अच्छी पसंद है आपकी जानी दुश्मन फिल्म का चलो रे डोली उठाओ.
2: नमस्कार दीदी.
1: नमस्कार, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई.

0: मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्ता कर रहा हूँ।
1: जी स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में। आप कैसे हैं?
2: आप कैसे हैं? आप बढ़िया हैं?
0: अरे मस्त हूँ, आनंद में हूँ। आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में जीवन यापन मस्त चल रहा है बहन जी।
2: क्या बात है, क्या बात है। आपकी फरमाइश क्या है आज की? क्या कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप आज?
0: तो आज मैं किशोर कुमार जी के आवाज में
2: जी
0: एक दिल्ली का ठग, ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवाए, ये गीत सुनना चाहूंगा बहन जी।
2: वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है। हम आपका जो गीत है वो कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आज आप हमसे जुड़े और आपने इतना अच्छा गुनगुना के अपना गाना बताया, हमें बड़ी खुशी हुई। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: किनारा ये चंचल हवा।
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: जी मैम, हम ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रहे हैं।
1: नमस्ते संगीता जी, हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और हम आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और बहुत दिनों में मेरा फोन लगा है।
1: हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आप खुश हैं ये बात जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आप क्या करती हैं?
2: जी मैम, हम आज वाइफ हैं तो घर में रहते हैं, अपना घर का काम करते हैं।
1: जी बहुत बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अपने घर को संभालती हैं और आप अपने घर का कार्य करती हैं।
2: जी मैम,
1: बहुत खुशी हुई मुझे यह जान करके। तो आप हमें अपनी पसंद का गीत बताइए।
2: जी हमको स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा।
1: स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा जी, किस फिल्म का ही गाना?
2: नहीं ये तो पता नहीं मैम।
1: कोई बात नहीं, और हमें आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद
2: जी मैम। थैंक यू
1: थैंक यू
3: थैंक यू।

0: बताती हूँ, अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए साथियों, अब आपको ले चलते हैं रोजगार सूचना की ओर।
2: MPSBA यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट
2: और पदों की संख्या है 1200।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
2: शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 21 मई 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: साथियों, ये थी आज की रोजगार सूचना। अब जो घड़ी है वो इशारा कर रही है आप सभी से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आपकी मित्र महिमा दी पटेल को
1: और खुशी गंधी को। नमस्कार।

अभी युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम 6:30 का लोकधारा कार्यक्रम, कलाकार होंगे राजू पटेल और साथी। 7:20 का ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें आपको सुनाएंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा सुनिए वार्ता, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान, वार्ताकार होंगे डॉक्टर अभिषेक शर्मा। साथ ही सुनिए आज की सीख, फिल्म सीरीज सुनिएगा 8:15 पर और रात्रि 10 हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों कार्यक्रम मन भवन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लेकर आएंगे 6 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी रात्रि 8 सौखियों में। दिल्ली कैंसर लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइड। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा हिंदी महक्रम में हिंदी काव्य पाठ, कवि होंगे सियाराम अहिरवार। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:30 पर, 5:30 पर, 8:15 पर और 9:30 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत में पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, राग अहिर भैरव और पूर्वी धुन। 9:00 सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे माया देवी मोनी। फिल्मी कवालियां सुनिएगा 9:30 पर। 10:05 पर सुनिएगा गांधी चर्चा, प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे।

बारे में। कल सुबह 7:20 में पसंदीदा हिंदी नए क्रम में हिंदी काव्य पाठ, कवि होंगे सियाराम अहिरवार। फिल्म संगीत सुनेगा 7:30 पर, शाम 5:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:30 पर। सुबह 8:30 में पसंदीदा शास्त्रीय संगीत में पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, राग अहिर भैरव और पूर्वी धुन। 9:00 सुनेगा लोकरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगी माया देवी मोनी। फिल्मी कवाली सुनेगा 9:30 पर। 10:05 पर सुनेगा गांधी चर्चा, प्रवक्ता प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। गैर फिल्मी भजन सुनेगा 10:20 पर। आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा 10:30 पर। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। इसमें सुनिए वार्ता, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव। वार्ताकार होंगे प्रियांशी अवस्थी। लोकधारा में कलाकार होंगे अखिलेश यादव शाम 6:30 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें सुनिएगा मानस प्रवचन, प्रसंग होगा रावण आदि का जन्म, तपस्या और उसका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। प्रवचन करता होंगे रविंद्र कुमार मिश्रा। इसके अलावा सुनिए भेंट वार्ता, मूंग की फसल के प्रमुख रोग एवं उनका एकीकृत प्रबंधन विषय पर डॉक्टर आनंद मिलन से बातचीत। इसके अलावा आज की सीख, रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक दूसरी औरत, लेखक होंगे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त, प्रस्तुति डॉक्टर अरविंद सोनी की होगी। 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत में पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार वादन, राग बागेश्वरी और हंस ध्वनि। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, 12:00 आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा महिला सभा दोपहर 1:00, इसमें सुनिए काव्य पाठ नम्रता शुक्ला से, साथ ही सुनिए उपयोगी जानकारी। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। शाम 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और रात्रि 8:00 सुर्खियों में। दिल्ली के एंसर करेंगे रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। मीडिया वेपर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं।
1: घंटे की ये खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डॉ मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि देशभर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए

मौजूदा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध संघ सांची ने भी दूध 2 रूपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धंधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन

0: डोर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: टू और कमल जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सुमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

0: Bina Bonnie Bennett. कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है।

0: दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी।
2: पर ये अंडे,
3: अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं,
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: तुसी फौज भी उताया जी?
1: हाँ पुत्तर।
0: छुट्टी आए हो? तुसी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बैना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरमत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
2: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
2: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे।

0: सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी

0: कितनी दूर जाना है?
1: बस थोड़ी दूर हो, वो देखो उस गड्ढे के पास।
0: जी
2: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: नहीं रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंडगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोंपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
3: जय हिंद कर्नल साहब।
4: जय हिंद बाना सिंह।
3: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
4: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
3: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहुजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहुजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। श्रोताओं, अब इसी के साथ

0: हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। यही सुनिए लोकधारा कार्यक्रम, कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। पहले सुनते हैं लोक शैलीबद्ध रचना राजू पटेल और साथियों के स्वर में।

0: ओहो, भाई साहब फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
1: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
4: मूलधारा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दादरा। कलाकार हैं राजू पटेल और साथी।

0: के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए एड्स जागरूकता पर ये लोकगीत। कलाकार हैं राजू पटेल और साथी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, आपको सुनाते हैं साक्षात्कार पर केंद्रित ये लोकगीत। कलाकार हैं राजू पटेल और साथी।

धारा कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाते हैं गुरु वंदना लोकगीत, कलाकार राजू पटेल और साथी।

इसके साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज कलाकार थे राजू पटेल और साथी। मीडिया में आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। श्रीमती जानकी पत्नी उत्तम सिंह, उम्र 27 वर्ष, ग्राम बड़ी बंधौली, थाना डकोर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, दिनांक 16/4/2026 को समय सुबह 11 बजे मोनी मंदिर उड़ई से कहीं गुम हो गई हैं। पद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, हरी साड़ी छापदार, पैरों में कत्थे कलर की चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिले इन नंबर पर सूचित करें। सिक्स 3 8 7 7 0 9 3 3 0। दूसरा नंबर है 9 4 5 4 0 3 5 9 0। एक और नंबर है 9 4 5 0। इसे एक बार फिर सुन लें, 9 4 5 4 0 1 4 2 8। सूचना एक बार फिर सुनिए। श्रीमती जानकी पत्नी उत्तम सिंह, उम्र 27 वर्ष, ग्राम बड़ी बंधौली, थाना डकोर, जिला जालौन से, दिनांक 16/4/2026 को सुबह 11 बजे मौनी मंदिर उरई से कहीं गुम हो गई हैं। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिले इन नंबरों पर सूचित करें। 9 4 5 4 0 3 5 9 0, 6 3 8 7 7 0 9 3 3 0। दूसरी सूचना सुनिए। सुशील पुत्र उधल, निवासी रामनगर उरई, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी नया रामनगर उरई, जिला जालौन से, दिनांक 19/4/2026 से कहीं गुम हो गए हैं। रंग सांवला, चेहरा लंबा, उम्र 30 वर्ष, कद करीब 5 फुट 6 इंच, आंख नाक कान सामान्य। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिले इन नंबर पर सूचित करें। नाइन फोर फाइव डबल फोर जीरो थ्री फाइव डबल नाइन एट डबल जीरो नाइन एट जीरो टू डबल जीरो सिक्स सिक्स थ्री एट सेवन नाइन फोर एट टू फोर जीरो। दूसरा नंबर है 7905853848। सूचना एक बार फिर सुन लें। सुशील पुत्र उधल, ग्राम मगरोठ, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, हाल निवासी नया रामनगर उरई, जिला जालौन, दिनांक 19/4/2026 से कहीं गुम हो गए हैं। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिले इस नंबर पर सूचित करें। 9

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जांच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रूपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब 1 साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारंभ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोणवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। आईपीएल में अब से कुछ देर में धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के आईटीआई मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रूपये प्रति लीटर महंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का।
2: मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

ग्राम सभा सुनने वाले सभी भैया बिरन खां जमुना भैया की दो हाथ जुड़ के राम राम पहुंच जावे। भैया और देखो अबे गर्मी को मौसम चल रहा है और गर्मी भैया देखो अपनी बड़ी चरम सीमा पे है और इतनो भैया धूप लगत है का बताएं भैया। देखो अपनो सभी भैया बहन से कहू है कि ई गर्मी के मौसम में भैया बिल्कुल दोपहरी के बाया ना निकले, कहें ततूरी भी बहुत तेज पड़ रही है देखो, लपट भी चल रही है, तो बीमार होबे को डर भी अपन खां बहुत ज्यादा है। तो हमारे सभी जनन से कहबू है कि भैया अपने जो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी हैं उनको ख्याल रखें और भैया देखो पानी अपनी अधिक मात्रा में पिए और देखो खान पान को विशेष ध्यान रखें। और अगर अपन भैया एक बात और अपन कहबू चाहते हैं, जैसे अपन परिवार की बात करें, अपने परिवार के लाने परिवार के विकास की हो या इमें सबसे भैया महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं नारी की। नारी भैया परिवार के विकास की वास्तविक धुरी और आधार है, वह न केवल भैया घर खां सवारत है बल्कि अपन बात करें भैया के पीढ़ियन को भी निर्माण करत है और संस्कार को बीज रोपण और परिवार खां भावनात्मक रूप से एकजुट करत है। तो भैया अगर अपन नारी के योगदान की बात करें तो भैया परिवार में बच्चा सबसे पहला भैया मां से ही सीखत है धैर्य दया प्रेम और बड़न को सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी नारी के माध्यम से भी सभी जने सीखत हैं। तो हमें भैया नारी को सम्मान करो चाहिए और देखो यहाँ सहारे की अगर बात करें चाहे सुख हो या दुख हो सभी जगह नारी परिवार में जो सदस्य होते हैं सबका मानसिक सहारो प्रदान करत है और परिवार में सभी सदस्यों के प्रति प्रेम और विश्वास खां बनाए रखत है। इमें बहुत भैया महत्वपूर्ण भूमिका नारी निभाउत है और जो भैया अपन कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन गृहस्थी हो चाहे कछु हो इन सभी काम संसाधन जो होते हैं अगर चाहे भैया अपने पास कम संसाधन हो लेकिन नारी भैया को बेहतर प्रबंधन करते हैं। नारी एक ऐसी बड़ी खूबी है कि भैया अपनी जो बुद्धि और परिवार की आय खां सही ढंग से उपयोग करते हैं, जैसे अपनी कम आमदनी है लेकिन उखा भी सही ढंग से चलाऊ थे। तो अपन सभी जने भैया नारी को सम्मान करें, नारी को भैया विशेष सम्मान करें, यही हमारे सब पंच भैया से कहबू है। और भैया देखो आज अपन कार्यक्रम लेके आए हैं सुनो गीत गुनो बतकाओ कार्यक्रम, जन उपयोगी चर्चाओं और लोकगीतन पे आधारित कम्पियस कार्यक्रम, प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति की। और देखो भैया आजकल के जो बहुत से मोड़ा मोड़ी है कातने का पुरानो जमानो भैया देखो आज देख भी नहीं मिल रहा है चलो गो है। आज अपन कोई के घर में जाते हैं तो कहते हैं इंग्लिश में वेलकम है स्वागत कई चीजें चली गई हैं। तो ऐसा ही है कि अपने बीच में एक हास्य लोकगीत है अपने पंचन का मन सुनवा रहे हैं जगदीश प्रसाद जैकवार से, तो पंच भैया सुने।

0: भी अपने भैया बहन है सुने थे शौनक गीत गुणवत्ताओं कार्यक्रम में, जो जगदीश प्रसाद रे अखबार को हास्य गीत और आगे अपनी चर्चा हुई उससे पहले अपन थोड़ी सी रुका थे।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: भैया बहनों देखो, अब जैसे अपन बात करें अपने आस पड़ोस की या अपने जो मोड़ा मोड़ी हैं 18-20 साल के हैं, गाड़ी वाहन चला रहे हैं, और देखो गाड़ी वाहन चला रहे तो सड़क सुरक्षा को ही विशेष ध्यान रखने, कैसा जो यातायात के नियम हैं उनको पालन अपन का जरूर करने। और का होते भैया अपने जो मोड़ा मोड़ी है गाड़ी वाहन इतनी तेज चलाते हैं क्योंकि भैया ऐसी देखत के जान निकाल देते हैं, लेकिन भैया का होता है कि गाड़ी तो अपनी जगह है ठीक ठाक है, अगर भैया कौन ऐसी दुर्घटना हो गई तो उमे भैया अपन खां भोगने पड़ा थे। और देखो मताई बाप से ज्यादा तो कौन हनी होते, और लड़का बच्चा तो जो काम देखो भैया बिना बिल्कुल कर लिए थे। तो हमारे सभी भैया बहन से कह वो है कि अपने जो बाल गोपाल है उन्हें उनको नियम को पालन जरूर करें गाड़ी वाहन चलाते समय। और देखो भैया अपने दाएं बाएं भी देख के चले, कैसे मुड़ने भैया जो तरफ मुड़ने हैं उस तरफ के भैया लाइट इंडिकेटर जलावे उनको बिल्कुल नियम को पालन करें। और ई गर्मी के मौसम में जो लू लपट भी चल रही है तो वो भी अपन विशेष ध्यान रखें गाड़ी वाहन चला रहे तो हेलमेट भैया देखो बहुत जरूरी है गाड़ी वाहन चला समय। कैसन दुर्घटना देखो भैया लेन नहीं जाने होते, कब कौन सी दुर्घटना आ जाए तो भैया अपन खा उनके जो नियम होते हैं उनको पालन जरूर करने और अपनी सुरक्षा रखने हैं। और देखो भैया अब अपन सुनवा रहे हैं रामदयाल पटेल से जो लमटेरा, तो पंच भैया सुने।

आप अपनी भैया बहन है सुन रहे थे जो रामदयाल पटेल से लमटेरा, और भैया आगे अपन बतकाव कर रहे हैं, उससे पहले अपन थोड़ी सी और रुकत है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भैया बेनरो देखो, अगर अपन बात करें भैया अपने घर की, और जैसे अपन बहुत से पंचभैया क्या करते हैं, घर में एक छोटो सो क्यारी बना लेते हैं और पेड़ पौधा लगा लेते हैं। अपन जैसे गृह वाटिका की अगर बात करें भैया घर में, तो अपने बहुत से पंच भैया हैं लगा सकते हैं, फूल फलवाद के पौधा लगा सकते हैं, और कछु भैया खान पान की चीजें होती हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें टमाटर उगा ले बे हैं, सब्जियन में भी कछु चीजें अपन उगा सकते हैं, और अपने घर में जो जगह हो बे आंगन में जगह रात है तो उनमें अपन लगा सकते हैं, और समय पर देखो उनको उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि धनिया पत्ती लगा दे बे, मिर्ची के पौधा लगा दे बे, तो समय समय पर देखो उनसे अपन फल भी मिलते रहे, अपन अपनों काम भी चलते रहे, और देखो सुंदरता ही बढ़ जाते हैं। घर के अंदर लगे हों, फल फलवाद लगे हों, फूल भी लगे हों, तो कितनों नौनो लगते हैं, उम्दा लगते हैं भैया। तो अपने पंचभैया को जरूर ध्यान रखें, अच्छो लगते हैं। और देखो एक बात और अपने पंचभैया का बताबू चाहते हैं अपन, काहे आजकल देखो समाज में बहुत सी छुआछूत भी चल रही है, आज जमानों कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आज भी कछु जगह ऐसी हैं जहां छुआछूत बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसो भैया अपनों सभी से कह रहे कि देखो छुआछूत बिल्कुल ना माने, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक हों, सुख दुख में शरीक हों, सभी जने मिलजुल बनाकर आ गए। ऐसे ही अपने बीच एक लोकगीत है अपन सुनवा रहे हैं दीनदयाल पटेल से, तो पंच भैया सुने।

0: अभी अपने भैया बहन है सुने थे दीनदयाल पटेल से जो लोकगीत, और आगे अपन मत का होगा उससे पहले अपन थोड़ी सी रुका थे।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो गीत गुरु बतकाव कार्यक्रम में भैया देखो अब अपने पंचन का पंच सुनवा रहे हैं लल्लू राम कुशवाहा जो तमूरा भजन, तो भैया सुने।

0: अबे अपने भैया बहन सुन रहे थे सोनम गीत गुणवत्कार कार्यक्रम में लल्लू राम कुशवाहा सिंह जो तमूरा भजन। और भैया अगर अपन बात करें आज के बहुत सी योजनाओं उनकी, तो भैया बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे किसान पंजीयन कराने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जिसे अपन केसीसी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही अपने बीच में एक वार्ता है, तो अपन सुनवा रहे अपने पंच भैया का किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान। वार्ताकार है डॉक्टर अभिषेक शर्मा, तो अपन सुने अपने पंच भैया सुने।
1: भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल किसानों की आजीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। किसानों को खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि यंत्र तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इन सभी कार्यों के लिए समय पर धन की आवश्यकता होती है। पहले किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों और साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर ऋण देना पड़ता था, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को कम ब्याज दर पर सरल और त्वरित कृषि ऋण उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी खेती से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आज किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। परिचय

बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में भारत सरकार RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना था। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का बैंकिंग कार्ड है जिसके माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड ATM कार्ड की तरह कार्य करता है। किसान इस कार्ड के माध्यम से नगद राशि निकाल सकता है तथा कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे किसानों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना या साहूकार और महाजनों पर किसानों की निर्भरता को कम करना, किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करवाना, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। अब इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आसान ऋण सुविधा। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। दूसरा है इसमें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत ब्याज लेना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और पारदर्शी होती है। फसल चक्र के अनुसार ऋण प्रदान करना। किसान को फसल उत्पादन और कृषि कार्यों के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें बीमा की सुविधा भी रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा और फसल बीमा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। नगद निकासी की सुविधा इस योजना में रहती है। किसान ATM की तरह अपने कार्ड से नगद राशि निकाल सकता है और उसे अपने कृषि कार्यों में उपयोग कर सकता है। यह व्यवस्था पूरी तरह से लचीली है। किसान फसल कटाई के बाद ऋण चुका सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? छोटे और सीमांत किसान ये भी ऋण ले सकते हैं। भूमि धारक किसान ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा जो बटाईदार होते हैं, जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं और जिनकी स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह को ऋण मिलता है। इसके अलावा संयुक्त देवता का समूह को ऋण मिलता है और पशुपालन एवं मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी इसमें ऋण दिया जाता है। इसको बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको अपने निकटतम शाखा में जाना है, वहाँ पे आवेदन लेके आपको आवेदन पत्र भरना है। उसके बाद आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरने के बाद कुछ जो दस्तावेज मांगे जाएंगे आपको संलग्न करना है और बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित करवा के आपका किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा आपको। आजकल कई बैंक ऑनलाइन आवेदन सुविधा भी प्रदान करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा क्या रहती है उसको जान लेते हैं हम। KCC के अंतर्गत ऋण सीमा किसान की भूमि, फसल तथा कृषि आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्य ऋण सीमा होती है, छोटी आवश्यकताओं के लिए कम ऋण होता है और बड़े किसानों के लिए ऋण अधिक दिया जाता है। कुछ मामलों में किसानों को 3 लाख या उससे अधिक तक ऋण भी प्राप्त हो सकता है। शुरू की जिसमें रियायती ब्याज दरें और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड 2020 योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक के माध्यम से डिजिटल पेमेंट और फ्लेक्सिबल विड्रॉल के साथ रुपए कार्ड के माध्यम से एकीकृत सिंगल विंडो क्रेडिट प्रदान करती है। KCC के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान और संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक हैं, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार इसके अतिरिक्त इस योजना में स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देवता समूह भी शामिल हैं, ताकि संस्थागत ऋण तथा समावेशी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। KCC और MISS के तहत ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फसल ऋण की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन और संबंध गतिविधियों के लिए भी ऋण सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। कुछ ऋण बिना गारंटी के होते हैं, उनकी सीमा बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध हैं, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है, जिससे प्रभावी ब्याज दर आपकी मात्र 4% रह जाती है अगर आप 1 वर्ष के अंदर आप अपना ऋण को चुकाते हैं तो। यह 5 साल तक के लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट की दान करता है, जिससे किसान आवश्यकता अनुसार धनराशि निकाल सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ब्याज में राहत दी जाती है। 1 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं, जो गंभीर आपदाओं में स्थितियों 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऋण को किफायती बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2006-07 में मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS चालू की थी। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ क्या क्या हैं? आर्थिक सहायता, किसानों को खेती के समय पर धन उपलब्ध हो जाता है, जिससे वो अपनी फसल चक्र को पूरी तरीके से सही समय पर पूर्ण कर सकते हैं। किसानों को ऊंचे ब्याज दर से मुक्ति मिल जाती है, जो साहूकारों से उन्हें मिलता था। आधुनिक कृषि तकनीकों और संसाधनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ता है। किसान ऋण लेकर अपनी खुद की मशीनरी खरीद सकता है। KCC का लाभ पशुपालन एवं मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी मिलता है। ATM और डिजिटल भुगतान सुविधाओं से
ग्रामीण क्षेत्रों बैंकिंग सेवाओं का

विस्तार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि विकास। किसान क्रेडिट कार्ड ने भारतीय कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जिससे वे बेहतर बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर पाते हैं। इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ा है। केसीसी ने इन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में बहुत सहायता की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

दूसरा कम ब्याज पर कृषि ऋण। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। पशुपालन और मत्स्य पालन में किसान क्रेडिट कार्ड की क्या भूमिका, आइए वो जानते हैं हम। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों का तक भी किया है। अब डेयरी किसान, मछली पालन करने वाले किसान तथा पशुपालक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और वो अपना मनचाहा पशु या उद्यम चला सकते हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऋण राहत प्रदान की जाए। अगर किसान की फसल खराब होती है तो उन्हें एक ऋण बहुत ही कम ब्याज दर में उपलब्ध कराया जाए या फिर उनकी ब्याज की माफी की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए। उनके आसपास अगर बैंक शाखा रहेगी तो बैंक में आसानी से जाके ऋण संबंधी वार्ता कर सकते हैं। किसानों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें फाइनेंस समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऋण कैसे निकाला जाता है और कैसे इसका ब्याज दर बढ़ती है, किस तरीके से कम ब्याज दर पर हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब किसान मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से अपने खाते का संचालन कर सकते हैं। डिजिटल सुविधाओं से पारदर्शिता बढ़ती है और किसानों को बैंक जाने की आवश्यकता कम हुई है। निष्कर्ष जान लेते हैं हम इसका। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। इस योजना ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम ब्याज दर, आसान सुविधा और सरल प्रक्रिया के कारण यह किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है।

भैया बहनों देखो सुनो गीत गुणवत् कार्यक्रम में अभी अपने बंज भैया सुन रहे थे डॉक्टर अभिषेक शर्मा की जा वार्ता। और भैया देखो अगर अपन बात करें भैया आज की सीख की तो विषय है छाती पे पत्थर धरके। तो भैया इको बहुत सो साधारण दर्द है कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना या कठिन परिस्थिति में अपनी दिल का मजबूत रखो है। जैसे कि भैया कहते नहीं है कि एक माँ के लाने एक बहुत बड़ा दिल पे पत्थर लग बहुत के कौन अपने बेटा की भैया ऐसी दुखद घटना की जानकारी लग जाए तो भैया दिल पे पत्थर रखत है। तो ये चीजें भैया बहुत होते हैं कि धैर्य रखो बहुत बड़ी बात होते हैं अपने किलाने। और देखो भैया आप पंचना कल के कार्यक्रम में बता दें कैसे भैया चलवे की बेरा भी हो रही है। तो पंच भैया ने कल के कार्यक्रम में मानस प्रवचन प्रसंग है रावण बाटका का जन्म तपस्या और उसका ऐश्वर्य तथा अत्याचार वार्ताकार हैं रविंद्र कुमार मिश्राजू। और भेंट वार्ता मूंग की फसल के प्रमुख रोग एवं उनका एकीकृत प्रबंधन विषय पर डॉक्टर आसद मिलन से बातचीत। और आज की सीख में छोटे मो बड़ी बात। तो अपना बतकाओ हो आप पंचन से मिले आज्ञा पंचो राम राम।

अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम व्यापारी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
5: एक्सलेंस

0: छतरपुर से और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पर के सौजन्य से यहाँ पर यह जो प्याऊ व्यवस्था हुई है और किसी भी कार्य को क्रियान्वित करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसमें आदरणीय शंकर लाल सोनी जी भी बिल्कुल बराबर जब से लगे हुए हैं, धूप में भी उन्होंने यहाँ पर साथ में रहे और प्याऊ व्यवस्था देखी, और आदरणीय अवनिंद्र खरे सर आप भी साहित्यकार भी हैं, समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं, इसी तरह से यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विपिन जी, सिन्हा जी और रविन्द्र जी, रविन्द्र हमारे स्टूडेंट हैं, पुष्पत जी, प्रकाश चंद्र जी भी हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते रहते हैं आप सभी सभी लोग, और भी यहाँ उपस्थित सभी जन, तो सभी इसके पात्र हैं कि आप सभी यहाँ पर आए और उपस्थित हुए, और अपनी उपस्थिति यहाँ पर केवल आपने दर्ज भर नहीं करवाई है, शिवदेव दीक्षित भी हैं, बल्कि आप सभी ने अपनी एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। और जो प्याऊ होता है उसे जल मंदिर कहते हैं, यह जल का एक मंदिर होता है जहाँ पर भीषण गर्मी से तृप्त राहगीर, तृषित जो राहगीर हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते हैं, और विद्यालय और आकाशवाणी के सौजन्य से जो यह कार्य हुआ है इससे अच्छा नाम क्या हो सकता था, क्योंकि आकाशवाणी से एक पहचान मिलती है और विद्यालय तो व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु होता है। इस तरह से मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्य होते रहें, क्रियान्वित रूप में आते रहें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि अवनींद्र खरे अंशुमान। इसी के साथ आज दिनांक 14 मई 2026 को आकाशवाणी छतरपुर और उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर, साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर में निशुल्क जल प्रदाय केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की ये रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न हुई। सहयोगी राजेंद्र अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।
2: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे

0: पर रवाना होंगे। पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर

0: ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक

0: मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. interacting with foreign ministers and heads of delegations.

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में। तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून

0: कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किए हैं, और एक एआई बेस्ड एक मॉडल लाए हैं जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो आईएमडी का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके उसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस चार दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ फाइव डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि फाइव डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और ये आई बेस्ड मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और एक यूटी में। अब उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि आईएमडी का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका एआरजी ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद तीन जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया एआईएफएस है, देन आईआईटीएफ का जो ईआरपी है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद एआई जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए आईआईटीएम है, जो एमओएस का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है। और उसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, पर बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसिमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और आईएमडी अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी आईएमडी और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे आईसीआर सेंटर्स हैं और बहुत आईआईटीज के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे आईएमडी वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी

0: कल लॉन्च किया है। ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ARG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMOWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहां पे AWS डेटा, ERG डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व्ड है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसमिनेट करते हैं, और डिसमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुसखी है, कृषिसखी, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पे कृषिसखी पशुसखी फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको

0: मिल रहा है। फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर है जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है जो लेस देन 2 हेक्टेयर है वो इन केस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म है लाइटनिंग है वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन उसको देखनी चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट के लिए इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज वन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म गीतों कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एम आलम का नमस्कार।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत वर्मा मलिक का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम था कर्तव्य। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश है और आप सभी के ईमेल प्राप्त हुए हैं। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक और तनवी, धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित और वैभव, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, ग्राम लोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, रागनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु, रोनिका और इनके परिवार वाले, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, ग्राम पनवाड़ी जिला महुआ उत्तर प्रदेश से देवीदी नहरवार, सुनीता, दिनेश कुमार, कपिल और पूजा वर्मा, सौजना ललितपुर से दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी, अखिलेश कुमारी, रामदेवी चाहना और अनन्या, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, रिंगरी छत्तीसगढ़ से देश वर्मा और करुणा वर्मा, रामचबूतरा कालवी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कौमनिशा शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, गांव पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूजा, ज्योति और शिवांश वर्मा, जवाहर नगर दुर्ग से

आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल, गांव नथाना पंजाब से हरचिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, अंबेडकर चौक बाकेड़ी से उत्तम और सुराज जमदाड़े, हिंगोली महाराष्ट्र से सारजी बोर्ड के श्रीमती नंदा और हनुमान बोर्ड के, ग्राम गरौली जिला टीकमगढ़ से चतुर्भुज अहिरवार, विनोद, राजेश, राजू, ब्रजेश, संध्या, पूजा, अनिकेत, रविंद्र और अंशिका, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, ग्राम दुलापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस, भटीपुरा महुआ से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज, आयुषी गुप्ता, ग्राम दुलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, पिंगावाला चौक गौराया जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, बलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरुलाल और अविराज सिंह, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, सदर बाजार राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान, धनोरी उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया और इब्राहिम, दादा बाबू गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, टोरोपाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वानिका और वाणी, ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और मोहिनी, ग्राम हरपुरा खिरियानाका टीकमगढ़ से इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, नारायण दास, चंद्रपाल, उमित कुंवर, उर्मिला, नेहा, प्रेम कुंवर, अंकिता, अविता, आरुषि, आरंश और इनके परिवार वाले, ग्राम पिपराबाग महोबा से चौकीलाल प्रजापति, खूबचंद, वीरेन, दानवीर, प्रियंका और इनके परिवार के सदस्य, ग्राम अजनर महोबा से सुरेश कुमार सैनी, प्रीति, राज, दिनेश कुमार सैनी और उनके परिवार के सदस्य, ग्राम पोस्ट बिरखेरा हमीरपुर से मणिराम पाल, मुलखान सिंह, सुधांशु, हिमांशु, प्रांशी, निवेदिता, ज्योति, मानसी, सुदीपा और सुशीला पाल। श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म यादगार का ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे यादगार फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की थी, गीत इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और फरमाइश आप सभी की। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान और अनु खान। फजलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, शालिनी, देवांशी, वाणी और जीवन। बटेंडा डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। ग्राम रजौनी महोबा से उदय भानपाल, दीक्षा प्रदीक्षा, जय हिंद, विमलेश पाल। ग्राम गुना खरगापुर टीकमगढ़ से राजाराम अहिरवार, राधेलाल, प्रवीण, शारदा, दीपा, सीमा, नेतू, राखी और इनके परिवार के सदस्य। पापेट शाहगढ़ जिला सागर से अशोक कमल, नामदेव, भवन, अनुरथ, तुलसी, मदन, राकेश, प्रकाश और राजा नामदेव। ग्राम राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, रत्नेश और शांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, राम पांडे और राजवाड़ी। कस्बा बरारा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, आकृति, ज्योति, जयप्रकाश, प्रियंका, छोटी, गुड़िया नूर और नमन। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, राधिका, दीपिका सैनी और उनके परिवार वाले। शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, ओम और पिंकी सेन। कानपुर उत्तर प्रदेश से पूनम सिंह और काजल सिंह। ग्राम पोस्ट सौरई मड़ावरा ललितपुर से संतोष नामदेव, अनिल, अभय, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रोहित, शक्ति, भक्ति, अनु और अनन्या। वलितपुर मढ़ामऊ से राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी, दीपांजलि और अनुराग। ग्राम मृतला महोबा से सोनू भास्कर, मोनू, रश्मि, दीपिका, सुषमा, देवांश, नंद किशोर और ब्रजनंदन। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और बेबी गव्या। ग्राम पवई सरीला हमीरपुर से कन्ना बाबू कुशवाहा, बलराम, रामरतन, अभिजीत, नंदिनी, अंशिका, शिवेंद्र, नरेंद्र और उनके परिवार वाले। ग्राम मामना सलारपुर महोबा से सोहन सिंह राजपूत, एलके राजपूत, आकाश, फुरम और प्रियांशी। पिपरा महोबा से मोहनलाल प्रजापति, वृंदावन हरिदास, नितिन, राहुल, छविलाल, भागीरथ, घनश्याम, मोहन, खूबचंद, हरिराम और इनके परिवार वाले। तिलकनगर कोंच जालौन से अनिसुल्ला मंसूरी, कैसर जहां, समीउल्ला, नसीम बानो मंसूरी, सन्नोबाजी, मेहनाज मंसूरी और उनके परिवार वाले। मृतला महुआ से रामजीवन राजपूत, रामलन, रामाश्रय, भूरा, सूर्यांश और ऋषिकांत। मृतला महुआ से ही रणसिंह राजपूत, शत्रुघ्न, भूपेंद्र, गौरव, गुरु महाराज, जानवी और विनीता। गायत्री मोहल पनवाड़ी से देवनारायण पंचाल, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज गुड्डी और अंकुश पांचाल। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से रविन्द्र कुमार गुड़िया, भाव्या, निवेश कुमारी और नियति कुमारी। सावंतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा। ग्राम सालबड़गांव महाराष्ट्र से किरणवीर, साईनाथ वैष्णवी और सुरेखा वीर। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद साकिब। ग्राम उगला तहसील बराड़ा अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। सलारपुर रोड कुरचेत हरियाणा से विजेंद्र कुमार जायजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप माराकर, सुनीता, मुस्कान, योगेश और इनके परिवार वाले। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इदीस, नूर मोहम्मद, इरफान, मीना, काशिफ और बेबी माहिरा। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। लहदरा हरपालपुर से लक्ष्मी प्रसाद प्रजापति, रामहित, नन्नीबाई, अपूर्वा और उनके परिवार वाले। मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गौहाणकर, वैशाली और कुमारी ध्वनि। सिणधरी बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, राधा विक्रम और अर्चना डाबी। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलम बेगम, रेहान और फैजान मोहम्मद।
संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावल, अब्दुल हक, जियाउल हक और सोहन जोशी। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुलाल और शुभदीप। बापू कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद जैद, मोहम्मद उजैर और मोहम्मद जुनैद। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। कंडला बदर से जगदीश जौहरी, पूजा पायल। गांव अली मोहम्मद, सिरसा हरियाणा से सुभाष लूना, ओमती मेनपाल, अमरजीत लूना और सीताराम कांगड़ा। मोर टका माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, मानस और कनिकराज पटेल। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। बरुआ समीरपुर हमीरपुर से ब्रजेंद्र कुमार धूरिया, श्रीमती अर्चना, अमन, अविनाश और दीपशिखा। बड़सिंगी बुल्ढाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर। बुल्ढाना से ही राजेश कुबरखेड़े, शिव सागर और इंदिराताई। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता और प्रतीक हेवराले। श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गोपी फिल्म का यह गीत।

श्रोताओं, आपको एक और गीत हम सुनवाते हैं और उसके बाद हम दोनों गीतों की फरमाइश आप तक पेश करते हैं। आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का ये नगमा।

0: बात कभी कभी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आंखें फिल्म का ये नगमा, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत साहिर का था और संगीत रफी का। इस गीत से पहले आप सुन रहे थे गोपी फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की थी, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत कल्याण जी अन जी का। दोनों गीतों की फरमाइश इस तरह से है। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, ममता कीर्ति और भूमिका।

नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, वारसी सिंथौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान और इनके परिवार वाले, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, मामूलबाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंत राव और निवृत्ति, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विकास, शुभम, पवन और संजीव, नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल, खोखरा वाले श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन, ग्राम बिटोडा महाराष्ट्र से योगुराज मस्के, इंदुमती, मल्हार, कविता, विष्णु और गोविंद, बरियारपुर मुंगेर बिहार से कुमार रामदेव पटेल, श्रीमती सुनीता, पुष्पा, अमित, आकाश और वाणी पटेल, शहरी बड़नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा और अनामिका, संत गाडगेनगर महाराष्ट्र से अनीता गाठोड़े, रमेश चंद गाठोड़े और लोकेश, खलीलपुर जालौन से अंजलि जाटो, राघवेंद्र, आकांक्षा, ऋषि और इनके परिवार वाले, अलगीडांड छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, फूलजी और इनके परिवार के सदस्य, सलारपुर सारनाथ बनारस से बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अन्नू, अरुणेश और इनके परिवार के सदस्य, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशोर, ताशु, अर्णव और आनंद, ग्राम बिडोरा सेवड़ा दतिया से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, रामवीर, यशपाल, जयपाल, महिपाल और इनके परिवार वाले, ग्राम गोना कुसुमाड़ ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश, लखनलाल चाहना, आकाश और रानी परी, डोडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार, डॉली, बेबी, पूजा, प्रभा देवी और इनके परिवार वाले, मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौशल, कोडवा बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय और हैप्पी, चंडीगढ़ से शेफ अली, शेफी अरोड़ा, पूजा अरोड़ा और मास्टर डेविस, कुरुक्षेत्र हरियाणा से प्रदीप कुमार, रेखा रानी, अंशुमन बल्ला, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, सारगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, ग्राम मामना सलीला हमीरपुर से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियंका और दिव्यांशी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कृतिका, कोयल, लक्ष्य और नानक चंद मल्होत्रा, विलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, रंजन साहू, सुशीला, देवांकन और शशिकला, बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन, सजाद हुसैन, मुज्जू और अनम, रामजीनगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र बड़े, ज्योति, आकाश और आकांक्षा, ग्राम नवागांव राजनांदगांव से सोहनलाल साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, तेजेश्वर साहू, कुशाल दास साहू, गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक, सचिन, नंदिनी, प्रियंका और रोहित, अकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, आजिक और आदित्य, ग्राम टोरी तहसील भांडेर दतिया से सुरेश कुमार केवट, शिशुपाल, छोटू, खुशी, खुशबू, पायल, ऋतिक, अमित, आरुषि और परिवार वाले, भांडेर दतिया से ही मेहरबान सिंह नागल, संतोष नागल और इनके परिवार वाले, ग्राम साहू टोला कनिया बालाघाट से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति, अंकित, श्रद्धा और गौरव, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, ग्राम परसेठा फतेहपुर से बेटा यादव, पंकज, अंगद, आयुष, आदर्श और आर्यन, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और सुराती, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष और अभिनव, वीएन गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सनी, हेतल, कृष्णा और जमीन, राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से जगदीश जोशी, मंजुला जोशी, हितेश, हेमा, रिद्धि, सिद्धि, पुलकित और पर्व जोशी, पद्मा टाकी नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजन जी शाह और सुषमा कपूर, बीड शहर महाराष्ट्र से विकास वानछोड़े।

रेखा, अदिति और वैभव हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे, बड़ा बाजार उदयपुर से गोपाल तांबोली, कांता, तिलक, किरण, सक्षम, परी और लावण्या, वीर सिंहपुर पाली जिला उमरिया से संतोष कुमार राव, कुमारी भारती राव, बेलाबाई, ओम प्रकाश सिंह, विकास सिंह और इनके परिवार वाले, जंटेपुरा पनवाड़ी से देवीदीन अहिरवार और इनके परिवार वाले, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, मिलन नारे और श्रीधर नारे, शिवाजीनगर बड़ारी देशमुख से राजेश कुवड़खेरे और इनके परिवार के सदस्य, बुल्ढाना से दिलीप राम धाड़े और सुराज राम धाड़े, पेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी और अर्जुन गवनेकर, पुणे से अंकज, आर्या और प्रियंका, जरुण वरुण से बाबा साहेब बाड़ोदे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, ग्राम भंडरा श्रीनगर महुआ से भारत रेखवार अभिषेक, नैन्सी, प्रियांशी, कुसुम, निर्दोष और इनके परिवार वाले, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, नाजिया और इनके परिवार के सदस्य, उबरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगद परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और इनके परिवार वाले, ग्राम कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कडवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और उद्धव, दीवानपुरा राठ हमीरपुर से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेमरानी, दिव्या, नीलम और छोटा बाबू, नखरा जिला महुआ से जानकी प्रसाद सिंह, वीरनारायण, मथुरा प्रसाद, मूलचंद विश्वकर्मा और उनके परिवार वाले, कुरसेंडा जालौन से गोविंद सिंह भदौरिया, विक्रांत सिंह और प्रभजन सिंह भदौरिया, पूजा रेड्डी श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव यादव। श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दो रास्ते से, आवाज मोहम्मद रफी की थी। इसी क्रम में आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सच्चा झूठा फिल्म का ये नगमा। इसके बाद हम आपकी फरमाइश लेते हैं।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत इंदिवर का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। इसके पहले आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का नगमा, आवाज मोहम्मद रफी की। दोनों गीतों की फरमाइश इस तरह से है, पटना कला गुनोर पन्ना से लल्लू सिंह चंदेल, मुकेश सरिता, छोटू प्रभा और देवांशु, कोटरा जिला जालौन से अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय कार्तिक तिवारी और उनके परिवार वाले, ग्राम प्रतिपुर मऊरानीपुर झांसी से धर्मा भदौरिया, महेंद्र, अंजलि, मोहित और इनके परिवार वाले, रामलीला मैदान सचंडी से शशि त्रिपाठी, मनु, तनु, सोनू, आलोक, शिवांश और रामानंद त्रिपाठी, हरदोई गुजर जालौन से राजेश मिश्रा, नरेश, उमेश, योगेश, रिक्की, सिम्मी, निम्मी, रिया, बिट्टू और गुनगुन, संजीवनी नगर जबलपुर से सुनीता खरे, आनंद खरे, आकाश खरे, आशुतोष और आशरा खरे, श्रीराम कॉलोनी भोपाल से राजेश खरे, पूजा और अभी, लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कुमार कसाना, माया देवी, प्रत्यक्ष, तोमर, ऋतिक, अजय, विक्रम सिंह और आदित्य, बंडा बेलई सागर से पुष्पा तिवारी, गणेश तिवारी, दीपा तिवारी, विक्की, अंकित, अर्पित, राकेश गोस्वामी, मनोज और लता, सागर से वीणा, शानू, रानू और शैलेंद्र, ग्राम ढड़ारी छतरपुर से रामानंद गंगेले, उमाशंकर, ज्ञानेश्वर, अनुराधा और विवेकानंद गंगेले, सागर रोड छतरपुर से अमित, अंशु, लवली सिंह, यहीं से आत्री, मैत्री, अभिजीत, हर्षवर्धन, रानू और आशु, चार मीनार चौक गड़े पनेरिया से अनीता मोटवानी, राजेश, रेशम और अनिल राज मोटवानी, ग्राम चितैया महुआ से प्रमोद पाल, महेंद्र पाल, भोला पाल, प्रशांत, आशीष और संजू, शिकहरा महुआ से सुमंत कुमार शर्मा, सुमन राजपूत, अवनीश, शिव पूजन, रामदास और अशोक, ग्राम बड़ा कीरतपुरा से दीपक मिश्रा, पूजा मिश्रा, अर्चना मिश्रा और उनके परिवार वाले, नारागंज परेला से राजकुमार सोनी, अरुण कुमार सोनी, मनोरमा, अंजना, लवली, आरती, अशोक और दिलीप सोनी, ग्राम बिरखेरा हमीरपुर से कृष्ण कुमार गुप्ता, जीतू गुप्ता और सीपू गुप्ता, मझगुआ कला अमरौनी छतरपुर से आशारम कुशवाहा, अरविंद, अरुण, राहुल, मोतीलाल और इनके परिवार वाले, धनोरी राठ हमीरपुर से धनीराम यादव, राजकुमार, वंदना और संतोष, नेतना खुरई जिला सागर से

ठाकुर, हल्ले, दिलदार, माधव सिंह और रामराज, टोरिया टीकमगढ़ से जगदीश प्रसाद रेखवा, श्री राम और शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, रविकांत नामदेव, यहीं से पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना, मोना हन्नी, यश सौम्या और उनके मम्मी पापा, आलमपुरा स्टेशन रोड महुआ से ब्रजनंदन कुशवाहा, गंगादीन अनुरागी, तेजराम, परमानंद, रूपचंद, प्रजापति, सुरेश कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, चोरबरा महुआ से राजेश कुमार श्रीवास, पंकज कुमार, राधा, मोहिनी, शोभनी और अभय, ग्राम पोस्ट घुघसी नेवाड़ी टीकमगढ़ से प्रवेंद्र कुमार यादव, नीरज, अशोक, दीपक, राजा, सोमेश और उनके परिवार वाले, ग्राम बसराही छतरपुर से सीताराम पटेल, लल्लन, शिवचरण, अशोक, श्याम बाबू और राजकुमार पटेल, जय बजरंग श्रोता संघ बंडा बेली सागर से लक्ष्मण रेखवार, अनवत रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, लल्लू, हल्ले भाई, ऋषि रेखवार, बद्री प्रसाद, नंद किशोर प्रजापति, शरद प्रजापति और पूनम, ग्राम पोस्ट तिगौड़ा सागर से गोकुल अहिरवार, देशराज, हरिराम, राजेंद्र, बलराम, प्रेम बाई, रामसखी, गेंदा, बालेंदु, हल्के, छन्नू, श्रीमती मीता, जशोदा महंती और उनके परिवार वाले, बरौली खरका सरीला हमीरपुर से दयाशंकर विश्वकर्मा, गजाशंकर, शिवशंकर, रामकृपाल, रामलन, रोहित, सुकुमार, श्यामकरण और उनके परिवार वाले, नया गांव पन्ना से राविंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अशोक कुमार, राम कुमार, राजेश कुमार और उनके परिवार वाले, कटकहा पन्ना से प्रताप सेन, सविता सेन, रामशरण, नेहा, गिरधारी, हरिश्चंद, प्रशांत, अम्बेश और कृष्णा, ग्राम सुरदहा पड़ेरी पन्ना से राम प्रताप कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा, रोहित कुमार, सुमन देवी, ऋचा देवी और पूजा देवी, ग्राम बिरहट नई बस्ती से देवेंद्र कुमार यादव, लाल दीवान, प्रसाद, मिलन, रोशन और शोभालाल। श्रोताओं, आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म के गीत को। आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फरमाइश आप सभी की। ग्राम बलेह जिला सागर से उमेश विश्वकर्मा, राजेश, सतीश, सरमन, विमल, संदीप, घनश्याम और ऋषिकेश। ग्राम गोपालपुरा तहसील रहली जिला सागर से ऋषिकेश तिवारी, निरंजन तिवारी, दयाशंकर तिवारी, श्रीमती मंजू तिवारी, विष्णु, लक्ष्मण प्रसाद, मोनू, आरती, मदन गोपाल, मनीष, उमेश और इनके परिवार वाले। ग्राम पोस्ट बमनौरा कला छतरपुर से अशोक पाठक, गिरजा, संजीव, सुनीता, कमलेश, प्रशांत, प्रतिज्ञा, यहीं से सुरेश साठी, मंजू, अनीता, विनीता, आशीष और मना नामदेव।

इसके साथ ही फरमाशी फिल्मी गीतों कार्यक्रम मनभावन अब यहीं पर समाप्त होता है। प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरूआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता

0: की व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest-growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement.